मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026, 5:57 होने को हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र

0: महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डरबन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का अत्यंत पवित्र पंचाक्षरी मंत्र है। इसका भाव है, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। जहाँ शिव का नाम है वहाँ शांति है, जहाँ शिव का ध्यान है वहाँ शक्ति है, जहाँ मन में महादेव का विश्वास है वहाँ हर कठिन राह में एक आशा है।

हनुमान भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। भक्त उन्हें संकट मोचन कहते हैं।

0: कहते हैं।
1: दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
4: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वीव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर।

हरि नाम की धुन ऐसी जो मन को निर्मल कर जाए, भटके हुए जीवन को भी प्रभु के चरणों तक ले जाए। न धन चाहिए न वैभव चाहिए, बस हरि नाम का सहारा हो। जब होठों पर हरि नाम रहे तो मन में प्रेम उजियारा रहे। हरि नाम ही आधार है, हरि नाम ही संसार है। जिस हृदय में हरि बस जाए वही हृदय सच्चा मंदिर है।

0: इसी के साथ आज की आराधना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वामी राम तीर्थ के विचार।
1: एक मनुष्य ने कुछ धन जमीन में गाड़ रखा था। उसके लड़के को मालूम हो गया। लड़के ने जमीन खोद कर धन निकाल लिया और खर्च कर डाला, किंतु तौलकर उतने ही वजन के पत्थर वहां रख छोड़े। कुछ दिनों के बाद जब बाप ने जमीन खोदी और रुपया ना पाया तो रोने लगा, हाय मेरी दौलत कहाँ गई। लड़के ने कहा, पिताजी रोते क्यों हो, आपको उसे काम में तो लाना ही ना था, और रख छोड़ने के लिए देख लो उतने ही तौल के पत्थर वहां मौजूद हैं। धार्मिक वाद विवाद और झगड़े जो होते हैं वे नकद धर्म पर नहीं होते, उधार धर्म पर होते हैं। नकद धर्म वो है जो मरने के बाद नहीं किंतु वर्तमान जीवन से संबंध रखता है। उधार धर्म अंधविश्वास पर निर्भर होता है। उधार धर्म कहने के लिए है, नकद धर्म करने के लिए। धर्म के उस भाग पर जो नकद है सब धर्म सहमत हैं। सत्य बोलना, विद्या अध्ययन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, दूसरे के धन आदि को देखकर अपना चित्त न बिगाड़ना, संसार के लालच और धमकियों के जादू में आकर वास्तविक स्वरूप को ना भूलना, दृढ़ चित्त और स्थिर स्वभाव होना आदि आदि। इस नकद धर्म पर कहीं दो मत नहीं हो सकते। उधार के दावे वाद विवाद करने की प्रीति रखने वाले लोगों को सौंपकर स्वयं वर्तमान कर्तव्य यानी नकद धर्म पर चलने वाले ही उन्नत करते हैं और वैभव पाते हैं। जब स्वामी रामतीर्थ जापान को जा रहे थे तो जहाज पर अमेरिका का एक वयोवृद्ध प्रोफेसर मित्र बन गया। वो रूसी भाषा पढ़ रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि 11 भाषाएं वो पहले से जानता है। उससे पूछा गया, इस उम्र में ये नवीन भाषा क्यों सीखते हो? उसने उत्तर दिया, मैं भूगर्भ शास्त्र का प्रोफेसर हूं। रूसी भाषा में भूगर्भ शास्त्र की एक अनोखी पुस्तक लिखी गई है, यदि मैं उसका अनुवाद कर सकूंगा तो मेरे देशवासियों को अत्यंत लाभ पहुंचेगा, इसलिए रूसी भाषा पढ़ता हूं। स्वामी राम ने कहा, अब तुम मौत के निकट हो, अब क्या पढ़ते हो,

0: ईश्वर सेवा करो, अनुवाद करने में क्या धरा है? उसने उत्तर दिया, लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है। इसके साथ यदि यह भी मान लिया जाए कि इस काम को करते करते मुझे नरक में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, इसकी कुछ परवाह नहीं। अगर मुझे घोर नरक के दुख मिलते हैं तो हजार जान से भी कबूल हैं यदि भाइयों को सुख और लाभ मिल जाए। इस जीवन में सेवा के आनंद का अधिकार मैं मौत के उस पार के डर से नहीं छोड़ सकता। यही नकद धर्म है। भगवत गीता में बड़ी सुंदरता से आज्ञा दी है, कर्म तो करते ही जाओ परंतु फल पर दृष्टि मत डालो। एक मनुष्य बाग लगाता था। किसी ने पूछा, बूढ़े मियाँ क्या करते हो, तुम क्या इसके फल खाओगे? एक पांव तो तुम्हारा मानो पहले ही कब्र में है। माली ने उत्तर दिया, औरों ने बोया था, हमने खाया, हम बोएंगे दूसरे खाएंगे। इसी प्रकार संसार का काम चलता है। जितने महापुरुष हो गए हैं, राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद, क्या इन महापुरुषों ने उन वृक्षों का फल स्वयं खाया था जिन्हें वे बो गए थे? कदापि नहीं। इन महापुरुषों ने तो केवल अपने शरीरों को मानो खाद बना दिया, फल कहाँ खाए? जिन वृक्षों का फल शताब्दियों के बाद लोग आज खा रहे हैं, वे उन ऋषियों की खाक से उत्पन्न हुए हैं। ये सिद्धांत ही धर्म का वास्तविक प्राण है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वामी रामतीर्थ के विचार।

0: इस कार्यक्रम में आज का विषय है कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।
1: किसान भाई, कृषि यंत्रण का रोजमर्रा के जिंदगी में बड़ा महत्व है। खेती किसानी में भाई देखा, बड़े महंगे कृषि यंत्र आजकल अवत बाटे हैं। पहले के जमाना नहीं बाय कि भाई हल बैल से खाली खेती हो जाए, और उनके रखरखाव भी बहुत ज़रूरी हो, खास तौर तब जब खरीफ का फसल ख़त्म हो, बरसात का सीजन ख़त्म हो। बरसात में भाई देखे तो चारों तरफ नमी रहले, पानी रहला और कीचड़ रहला। अगर उनका ठीक से रखरखाव ना कैल जाए तो बड़ा दिक्कत होला और महंगे कृषि यंत्र खराब हो सकें और आर्थिक नुकसान भी हो चुकाला। आज जो बातचीत बा कृषि यंत्रण का रखरखाव कैसे कैल जाए के जानकारी देव दे हमारे बीच में भैया श्री राजनाथ मिश्र जी बैठल बाटे। आप भाई कृषि विशेषज्ञ बाटे। भैया मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बा। हम सबसे पहले आपसे ही जानल चाहब कि कृषि यंत्र कौन कौन बाटे, ओकर ए मौसम में खास तौर से का रखरखाव कैल जाए।
2: भैया, जहाँ तक कि कृषि यंत्रों की बात है, खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अच्छे खादों का प्रयोग करने से, दवाओं का प्रयोग करने के बावजूद भी अब यह है इनसे जो है खेती में उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब जो है कृषि उन्नतशील कृषि यंत्रों का प्रयोग करके ही हम कृषि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक भैया खेत छोटे छोटे हो जा रहे हैं, अधिकांश किसान हल बैल भी नहीं रख पाते हैं और काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है, तो ऐसी दशा में लोग किराए पर ट्रैक्टर लेकर के या यंत्र लेकर खेती के कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है यदि किसान भाई करें तो उससे उत्पादन उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।
1: मतलब भैया, वैज्ञानिक विकास के साथ साथ अपने कार्यप्रणाली में भी किसान भाई के समय समय पर बदलाव लिया जरूरी हो
2: जी,
1: और निश्चित रूप से भाई जो समय से पीछे हो जाए तो वो असफल हो जाए, और जिस समय के साथ कदम मिला के चली वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगी।
2: सफल हो जाएगी।
1: तो कृषि यंत्रण का खास तौर से बरसात के समय में कैसे देखभाल करें, कौन कौन तरीका हो उनकर?
2: देखें भैया, जहाँ तक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से पहले ही हमको जो है प्रयोग करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए
1: जी।
2: अधिकांश किसान हल बैल और जो है यंत्र अपना रखे रहते हैं और सीधे बिना देखभाल किए हुए खेत में उसका प्रयोग करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि तमाम ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं
1: जी, जी।
2: और उनको काफ़ी जो है घाटा उठाना पड़ता है। तो प्रयोग करने से पहले हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अपने सभी नट बोल्ट, वाशर और जितने भी अवयव हैं वो सभी एक ठीक स्थान पर लगे हुए हैं कि नहीं लगे, उनको देख लेना चाहिए।
1: हाँ,
2: कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सब लगे होना चाहिए। दूसरा भाई, ये देख लें कि पार्ट्स तो लगे हैं लेकिन कभी कभी नट बोल्ट ढीला होता है, ध्यान नहीं देते हैं, जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है और या टूट जाता है। तो जितने नट बोल्ट, वाशर हैं, फैन बेल्ट है, इन सभीों को पर्याप्त मात्रा में देख लेना चाहिए कि वो कसे हुए हों और बेल्ट जो है तनाव युक्त हो।
1: बिल्कुल भैया, जरा सा सावधानी या लापरवाही बड़ा नुकसान के कारण बन सकेले।
2: इसके बाद जो कृषि यंत्रों में धारदार यंत्र जो काटने का कार्य करते हैं या जो मूविंग यंत्र जो घूमते हैं, उनमें भी अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि जो धारदार यंत्र हैं वो घिसे हैं तो उन पर धार लगवा करके उनको ठीक कर लिया जाए। और इसके साथ ही साथ जो घूमने फिरने वाले जो है भाग हैं उनमें ग्रीसिंग और आयरिंग का काम जो है अच्छी प्रकार से कर लें, जिससे कि जो है उसमें तोड़ फोड़ जो है
1: बिल्कुल ताकि वो जाम न हो जाए
2: जी।
1: और क्या सावधानी?
2: और सभी चलने वाले अवयव जैसे कि मूविंग पार्ट में पर्याप्त मात्रा में तेल ग्रीस का भी प्रयोग कर दें। यदि टायर लगे हुए हों तो उसमें हवा का दबाव भी चेक कर लें, ऐसा तो नहीं कि टायर में हवा नहीं है, इससे खिंचाव अधिक पड़ेगा और जो है टायर भी खराब होने का डर रहता है, तो हवा हवा को चेक कर ले। ये प्रयोग करने से पहले हमारे किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए।
1: एक भैया आदत भी होला ना हो कि जब ले काम चला तो चलावत जाए, ये बड़ा नुकसानदायक हो जाते हैं
2: जी जी।
1: तो और भैया बताओ,
2: इसके बाद प्रयोग के बाद क्या करना है? यंत्र मशीन की अच्छी प्रकार से सफाई करें था, यदि आवश्यक हो तो धुलाई भी कर लेना चाहिए उसको। सभी नट बोल्ट, वाशर अवयवों की जांच कर लें था, आवश्यकता अनुसार उसको जो है कस लें। सभी चलने वाले भाग जो होते हैं उसमें तेल ग्रीस की स्थिति को भी वो देख लें, और किसी भी प्रकार की त्रुटि कभी प्रकाश में आवे तो उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
1: भैया मिश्र जी, तो पहले सावधानी जैसे कृषि यंत्रण के प्रयोग के लिए कहो, अगर प्रयोग हो गए वो सीजन खत्म हो गई तब उके रखे के हो कुछ दिन का अगर मोहलत हो, फुर्सत हो
2: जी,
1: तब उसमें काका सावधानी बरते हैं।
2: यदि हमने प्रयोग कर लिया, प्रयोग करने के बाद जो है कृषि यंत्रों का रख रखाव बहुत जरूरी होता है।

0: कि जब इसका उपयोगिता नहीं है तो इसके ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें जिससे कि हमारा यह यंत्र अधिक दिनों तक जो है कार्य में जो है सहयोग दे सके। यंत्र मशीन के वो पक्के टिन शेड छप्पर आज से बने हुए स्थान पर जो है इसको रखना चाहिए,
1: धुलाई सफाई भी कर लीजिए, ट्रैक्टर
0: बाहर रखना चाहिए, नहीं तो किसान भाई जो है अक्सर जो उसको रख देते हैं। उसके बाद भैया यंत्र में मशीन में अच्छी तरह जो है साफ सुथरा कर लें उसमें, कभी कभी उसमें जो है तमाम घास लगे रहते हैं, मिट्टी लगी रहती है, तो उसको करने से पहले जो है साफ सफाई भी कर लेना चाहिए।
1: ट्रैक्टर बा भी बरसात के सीजन में पानी में कीचड़ में चलत बा
0: तो उसको
1: घास में लपेटल बा चक्का से लेके हर जगह
0: जी,
1: तो अब ले जाके मड़ई में टूटल फूटल खड़ा कर जाये तो लाखन रुपया के सामान जो है बेकार हो जी।
0: उसके बाद जो है जो हमारे क्षति होने वाले हैं जैसे कि उसमें फैन बेल्ट लगा हुआ है तो इसको चूहे हुए काट देते हैं, ऐसे पार्ट को जो है निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर जो है टांग देना चाहिए जिससे कि उसको जो है क्षति न हो। रबड़ के चमड़े हैं, प्लास्टिक के पट्टे हैं, इन भागों को निकाल कर उनको भी अलग रख देना चाहिए, उसी में नहीं रहना चाहिए। जंग लगने वाले भाग जो है जिसमें कि जंग लगता
1: बिल्कुल
0: है
1: बरसात के समय बरसात के तो में। नमी और जो वातावरण में हो पानी हो जंग उसे बहुत तीव्र लगे का खतरा रहा
0: जी जी,
1: तो के बदले बताओ क्या करें।
0: तो उसको जहाँ पर जंग लगने वाले भाग हैं उन भागों पर जो है जंग अवरोधी पेंट लगा देना चाहिए। यदि इसमें किसान इसमें सक्षम नहीं, इसमें पैसा खर्च होता है तो जला हुआ मोबिल का भी प्रयोग कर करके यह रख दें तो उस भाग में जो है जंग नहीं लगेगा। रबर का टायर लगे यंत्रों मशीन को ईंट लकड़ी की सहायता से जमीन से उसे छोड़ा देना चाहिए।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत, कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता, हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान।
1: हृदय, जिसे हार्ट या दिल भी कहते हैं, मांसपेशी से बना हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का केंद्र है। हृदय हमारे सारे शरीर को रक्त पहुंचाने का काम करता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसके साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकालने में प्रभावी होता है। इसके लिए हृदय का रोग शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। हृदय रोग के सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द, दबाव या बेचैनी का होना, सांस लेने में कठिनाई या घुटन महसूस होना, थकान, चक्कर आना, पसीना आना, मतली तथा शरीर के निचले हिस्सों में सूजन आना इत्यादि लक्षण शामिल होते हैं। हृदय रोग के संबंध में हमें जिन 5 विशेष लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें से पहला, जैसे किसी व्यक्ति को अपनी सामान्य दिनचर्या में या रात भर ठीक से सोने के बाद भी अधिक थकान महसूस हो। नंबर 2, हल्की गतिविधि जैसे सीढ़ी चढ़ना या रोजमर्रा के हल्के काम के दौरान सांस फूलने लगे। या 3, अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के गर्दन या जबड़े में दर्द होने लगे। 4, पैरों या टांगों में सूजन दिखाई पड़े। और 5, अनियमित हृदय गति मिलने लगे। इन सभी लक्षणों के होने पर हृदय संबंधी रोग के विषय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए चिकित्सक से परामर्श तथा इससे संबंधित जांचें करा लेना उचित है, जिसको करा लेने पर समय पर रोग का पता चल सके और उसका उचित निदान हो सके। होम्योपैथिक में हृदय रोग में कुछ विशेष दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे कुशल चिकित्सक के परामर्श से ही लेना उचित है। इसमें ब्राइटामियोर, इस दवा में तेज धड़कन होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है,

0: से काम करने में धड़कन होने लगे, अनियमित हृदय गति मिले, पल्स बहुत मुश्किल से मिलने, इन सब लक्षणों पर बराइटामियोर का इस्तेमाल करना उचित है। एक अन्य दवा है ऑरम मेट। ये हाई ब्लड प्रेशर में हृदय की धड़कन बढ़ने पर या अनियमित होने पर, पल्स की अनियमितता होने पर और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट यानी हृदय के आकार में बड़ा हो जाने पर इस्तेमाल की जाती है। एक और लाभदायक दवा है कैक्टस, जो एंजाइना पेन की एक प्रमुख दवा है, जिसमें दम घुटने का एहसास होता है, अत्यधिक पसीना के साथ तेज दर्द मरीज को महसूस होता है, जो बाएं बांह में भी होता है। रक्तचाप नियंत्रण और हार्ट अटैक के लक्षणों के मैनेजमेंट के लिए कैक्टस दवा का प्रयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण दवा है क्रेटेगस, जो एंजाइना के दर्द में उपयोग में लेने के अलावा हृदय से संबंधित लक्षणों की एक महत्वपूर्ण दवा है और जिसे हार्ट टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हल्की शारीरिक गतिविधि से भी अगर किसी व्यक्ति की सांस फूलने लगे, हृदय क्षेत्र में और बाईं तरफ गर्दन में दर्द महसूस हो, ब्लड प्रेशर की अनियमितता मिले और हाई कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और उपयोगी दवा है डिजिटलिस। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है और हृदय गति को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे हार्ट फेलियर के उपचार का इस्तेमाल किया जाता है। ये रक्तचाप को नियमित करके सूजन को कम करने में भी उपयोगी होती है। एक और दवा है स्पाइजीलिया, जो एंजाइना के दर्द में जहाँ अनियमित हृदय गति मिले, हृदय क्षेत्र में चुभने वाला दर्द हो, जो जरा से भी हिलने डुलने से बढ़ जाता हो, पल्स की अनियमितता हो और पल्स बहुत वीक या कमजोर किस्म की पल्स मिले, सांस लेने में दिक्कत हो, मरीज को दाहिनी ओर और सिर ऊंचा रखने पर राहत महसूस हो, तो ऐसे लक्षणों में स्पाइजीलिया का प्रयोग किया जाता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता, हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथी निदान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। बीसवें एशियाई खेलों पर दैनिक झलकी हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10 बजे।

आपकी फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश दिन में 12:30 पर। लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो पनघट में दिन में 1:15 पर सुनिएगा सुश्री प्रत्यक्षा कटियार से बातचीत। आपकी थाली में पोषण की खुशहाली। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुबह 7:00। इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 दिन में 12:15 और रात्रि 10:30 पर। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का समय होगा 8:45। इसके बाद 9:00 से आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह

9:50 पर आपको सुनवाएंगे विवेक प्रियदर्शन की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुन सकते हैं मीनाक्षी दास के गाए भजन और गीत। पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम, लोकगीत का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर कलाकार फूलचंद्र यादव और साथी और आस्था सिंह। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:00 से, और 11:30 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00 कलाकार होंगे।

11:30 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे कलाकार होंगे डॉक्टर राजकुमार। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवजन सुनेंगे प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत त्रिपाठी से बातचीत दिल ही तो है। ये थी आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायन स्वर रंजना जोगलेकर का था, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं।

रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर मन्ना डे और लता मंगेशकर की। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ली गई ये भक्ति रचना है।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जूली फिल्म से ली गई एक भक्ति रचना, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की राजेश रोशन ने और

0: पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को आप डीडी फ्री डिश और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: अभी आप फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटा नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित प्रदेश से साकार होगा विकसित भारत का सपना। देश भर में पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने की पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब प्रदेश विकसित होगा।
1: और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब ग्राम पंचायत की इकाई आत्मनिर्भर और विकसित होगी। उस विकसित परिकल्पना को, आत्मनिर्भर और विकसित होने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, सबसे महत्वपूर्ण सारथी बनने जा रहे हैं और इसलिए 1375 विकसित भारत के सारथी के रूप में आपकी इस भूमिका के लिए, यूपी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
0: इस बीच मुख्यमंत्री कल शाम गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। वे आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है।

0: आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
2: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है, साथ ही 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इसी साल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए अगले माह 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतों की गणना 27 अक्टूबर को की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 4 दिनों में 5,500 करोड़ रुपये के 3,765 व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही देश विदेश के खरीदारों की ओर से 12,500 करोड़ रुपये की कारोबारी पूछताछ दर्ज की गई है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ट्रेड शो में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 विषयक कार्यशाला को संबोधित किया। लखनऊ स्थित प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय की ओर से गोरखपुर में कल दूरसंचार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर सहित आसपास के 20 से अधिक जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। संचार लेखा कार्यालय लखनऊ के प्रधान नियंत्रक अजय कुमार ने बताया कि सभी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान कराना विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो।
3: यहाँ पर पेंशनर्स की कोई भी परेशानियां हो, उसको उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रांत में जाके सुनना और उनको सरलता के साथ सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा दायित्व है। हमारे अधिकारी जो हैं लखनऊ और वाराणसी में तो तैनात हैं ही। गोरखपुर एक बहुत बड़ा प्रांत है, जहाँ पर लगभग 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। पेंशनर्स के लिए सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त कर सके, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।
0: फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र स्थित मलवा कस्बे में कल शाम एक मकान में हुए कथित रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण हुए हादसे में करीब 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। फतेहपुर पुलिस के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान

देते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। पिछले कई दिनों तक हुई भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शाहजहांपुर में रामगंगा, लखनऊ में सई, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा, गोंडा में कुआनों और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां नारायणी नदी का तटबंध टूटने के कारण करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटा नियुक्ति पत्र, कहा विकसित प्रदेश से साकार होगा विकसित भारत का सपना। देश भर में पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने की पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत। सर्वोच्च न्यायालय ने UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग तोड़ी में गाया ख्याल, गायक कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी में गाया ख्याल। गायक कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल

0: पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदार है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों

0: के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि शोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोक सत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की तीन जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE को हिदायत दी है कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को तीन जबानों के निजाम से वही रियायत देने पर गौर करें जो पहले ही सातवीं जमात के तलबा को दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची और वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज और CBSE की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इस साल छठी जमात के तलबा को भी वही रियायत दी जाए जो सातवीं, आठवीं और नवीं जमात के तलबा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितम्बर को CBSE से कहा था कि वो छठी जमात के तलबा के लिए तीन जबान जिसमें दो भारतीय मुकामी जबानें शामिल हैं पढ़ने की अपनी पॉलिसी 2027 से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल से नाफिज करने पर गौर करे। CBSE के बयान के मुताबिक इस वक्त सातवीं, आठवीं और नवीं जमात में पढ़ने वाले तलबा को जब वो दसवीं जमात में पहुंचेंगे तो तीसरी जबान का बोर्ड इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत आलिया को बताया कि तकरीबन 99% स्कूलों ने तीसरी जबान की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और उन्हें इसके लिए जरूरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, जबकि तकरीबन 1.2% स्कूलों ने अभी तक ये पॉलिसी इख्तियार नहीं की है। ताहम समात के दौरान मरकज ने मौकफ इख्तियार किया कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को इस पॉलिसी से मुस्तस्ना करने के हक में नहीं है। मरकज का कहना था कि तलबा को मौजूदा तालीमी साल ही से जबान के नए निजाम पर अमल शुरू करना चाहिए। भारतीय बहरिया आज से जुमेरात तक नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे एडिशन की मेजबानी करेगी। तीन रोजा ये कॉन्फ्रेंस मरकजी मुकाम से बाहर तैनात ऑपरेशनल और एरिया कमांडरों समेत सीनियर बहरी क्यादत को यकजा होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फौजी स्ट्रेटजिक सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों का जामे जायजा लिया जाएगा और इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए सीनियर हुकूमती अमले के साथ तबादले ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मगरबी एशिया में जारी तनाजात के दौरान तवानाई के तहफ्फुज समेत भारत के बहरी मफादात की हिफाजत में भारतीय बहरिया के रोल को भी नुमाया करेगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी बहरी नजरियात और भारतीय बहरिया से तवक्कुआत के मौजू पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर जनाब भूपेंद्र यादव ने कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। कल मुनक़िद हुई इस मीटिंग में पहले से किए गए इकदाम, जमीनी सतह पर हासिल की गई पेशरफ्त और मौसम सरमा से कबल और इसके दौरान किए जाने वाले इजाफी इकदाम का जायजा लिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एक्शन प्लान के तहत बेदारी और कानून के निफाज के जरिए ऑटोमेटिक नंबर

0: प्लेट शनाख्त से लैस तमाम पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जाएगा। यकुम नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली इन्हदामी सरगर्मियों और खुले मकामात पर शहरी तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सफ़े आखिर तक रबते को मजबूत बनाने के लिए एक अवामी मुहिम के जरिए दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को फ़रोग दिया जाएगा। हुकूमत शनाख्त किए गए बंजर इलाकों में शजरकारी और हरियाली बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। मौसम सरमा से मुतालिक प्रोटोकॉल में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, पार्किंग फीस में इजाफा, दफातर के अवकात में मरहलावार तब्दीली और घर से काम करने के इंतजाम शामिल होंगे। ईवी पॉलिसी 2026 और परिवर्तन स्कीम को भी रजिस्ट्रेशन मुहिम और जन भागीदारी कैंपों के जरिए फ़रोग दिया जाएगा। मीटिंग के दौरान माहौलियात के मरकजी वजीर ने दिल्ली के 37 शनाख्त शुदा हॉटस्पॉट पर आइंदा महीने की 10 तारीख तक जन भागीदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया। दिल्ली की वजीर आला ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि लिए गए फैसले और निशानजद किए गए इकदाम ज़मीनी सतह पर मौसर अमल आवरी में तब्दील हों। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम तस्करा कर रहे हैं कि मिशन लाइफ के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह बरुएकार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड की रियासत जो मुल्क के तकरीबन 40% मादनी वसायल का मरकज़ है, सनअती तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के चैलेंज का सामना कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से शुरू किया गया मिशन लाइफ अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। झारखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां नौजवानों में माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के लिए तमाम कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट सतह पर 10 हफ्तों और 2 क्रेडिट पर मुश्तमिल लाजमी कोर्स मुतारफ कराया गया है। वज़ीर आज़म मोदी इस तहरीक के पीछे कारफरमा नजरिए की वजाहत कर रहे हैं।
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: वजीर आजम का ये नजरिया कोडरमा जिले की जरगा पंचायत में भी अमली इकदामात की सूरत में नजर आ रहा है। खजाटन गांव में कम्युनिटी की शिरकत से बंजर जमीन को सरसब्ज इलाके में तब्दील कर दिया गया है। पानी की बचत की कारकुन पार्वती देवी की क़यादत में गांव वालों ने पानी की बचत और पानी को जखीरा करने के लिए हजारों खाईनुमा बंद तामीर किए। इन कोशिशों के एतराब में सदर जमहूरिया ने उन्हें एजाज से भी नवाजा। इस इकदाम से कोडरमा में जेर जमीन पानी की सतह बेहतर बनाने में मदद मिली है। साहिबगंज के कबायली इलाकों में इस साल 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं जिनसे पानी जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ में मदद मिल रही है। इस मुहिम से मकामी कबायली बिरादरियों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं और पत्तों और बांस के जरिए इजाफी आमदनी भी हासिल हो रही है। स्कूलों में कायम इको क्लब बच्चों को कम उम्र से ही पानी और तवानाई की बचत की तरगीब दे रहे हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से होने वाली शदीद बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिलों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में कुआनो और कुशीनगर में गंडक दरिया भी खतरे की सतह से ऊपर बह रहे हैं। कुशीनगर जिले में नारायणी दरिया के किनारे बना हुआ एक पुश्ता तमकुही राज तहसील के इलाके से गुजरता है, कल रात पानी के शदीद बहाव के बायस टूट गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव कार्रवाइयां अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज भी रियासत के बाज हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम मुतासर अजला की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: उत्तराखंड में मौसमी

0: हालात में बेहतरी के बाद चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिले मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर चार धाम यात्रा 26 सितंबर के दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चिरबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रेकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। चिरबासा के करीब शदीद बारिश के बाद मलबे और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से गोरी कुंड के ऊपर बने तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते को नुकसान पहुंचा था। उड़ीसा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। हीराकुंड डैम के 28 दरवाजे खुले हैं जिनसे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कटक के नजदीक मुंडली में छोड़े जा रहे पानी की मकदार बढ़कर तकरीबन 8 लाख क्यूसिक हो गई है, जिस पर करीबी नजर रखी जा रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर, लामहदूद कंटेंट के दौर में अखदार की तश्कील। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के इफ्तिताही इजलास के दौरान फिक्की के साबिक सदर और जियो स्टार के नायब चेयरमैन उदय शंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान भारत की स्क्रीन मईशत, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स वीविंग, मसनू जहानत और कॉपीराइट के अलावा दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: अमरीका, भारत और दीगर 19 मुल्क ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी रजिस्टर में इन ममालिक की फहरिस्त शाये की है, क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स दरामदात और उससे मुतालिक अज्जा पर 29 सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। सिफर महसूल वाली मसनूआत में गैर मामूली बीमारियों के इलाज की सभी दवाएं, बांझपन के इलाज, खुलियात की थेरेपी, जेन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के अज्जा पर भी कोई महसूल आयद नहीं होगा। भारत के अलावा सिफर महसूल के जुमरे में यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, बरतानिया और वियतनाम शामिल हैं। ये इस्तिस्ना ट्रंप के अप्रैल ऐलान पर अमलावरी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तजारती तोसी के कानून की दफा 232 के तहत फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अज्जा की दरामदात को तरतीब देने की बात कही थी। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईसी नागोया में खराब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंसूख कर दिया गया। इसके साथ ही जापान के आईसी नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत का तमगे जीतने का शानदार सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और निशानेबाजों ने मुल्क के तमगों की तादाद में कई तमगों का इजाफा किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों के लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया खली। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने UPI लेन देन पर चार्जेस से मुतालिक खबर को नुमाया किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मौसम सरमा के पेश नजर फजाई आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत की तैयारी के हवाले से शह सुर्खी लगाई है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जंगी सतह पर तैयारी जारी। वर्क फ्रॉम होम, तामीरी व इन्हदामी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी समेत कई अहम फैसले। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म मोदी ने लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी आवाज़ नस्लों तक गूंजती रहेगी। अखबार की एक दिगर सुर्खी है, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन कतर के दौरे पर पीर की सुबह दोहा पहुंची।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की 3 जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर

0: गौर करें। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को ख़त्म कर दिया है और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

धड़कनों की भाषा को समझना जरूरी है, दिल की हर आहट को सुनना जरूरी है। जिंदगी की भागदौड़ में इतना भी न खो जाइए कि अपने दिल की सेहत का ख्याल ही न रख सकें। नमस्कार, आदाब और सब प्रेम अभिवादन। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेज़बान उज्जवल सिन्हा। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस नायाब तोहफे की जो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक बिना रुके बिना थके हमारी जिंदगी की डोर थामे रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिल यानी हृदय की। एक ऐसा अंग जिसकी हर धड़कन हमें जिंदगी का एहसास कराती है, लेकिन क्या हम कभी ठहर कर अपने दिल की सेहत के बारे में सोचते हैं? क्या हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, तनाव और हमारी आदतें हमारे दिल को स्वस्थ रख रही हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और दिल की सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आइए आज संकल्प लें कि हम अपने दिल की सुनेंगे भी और उसकी सेहत का ख्याल भी रखेंगे। श्रोताओं, इस वर्ष 2026 में विश्व हृदय दिवस का संदेश है डोंट मिस अ बीट, यानी दिल की किसी भी धड़कन और दिल की सेहत से जुड़े किसी भी जरूरी संकेत को नजरअंदाज न करें। ये संदेश हमें बताता है कि दिल की बीमारी के संकेत कई बार चुपचाप हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, इसलिए केवल तब जागरूक होना पर्याप्त नहीं जब कोई परेशानी सामने आए, बल्कि पहले से सावधान रहना भी बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़े बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अस्वस्थ खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी, तंबाकू का सेवन और उच्च रक्तचाप जैसे कारक हृदय रोग का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

याद रखिए, धड़कनों का साथ है तो जीवन में बहार है, धड़कनों का साथ है तो जीवन में बहार है, दिल की हिफाजत ही खुशियों का आधार।

श्रोताओं, अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करके हम अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। पहला, नियमित शारीरिक गतिविधि। अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार पैदल चलें, साइकिल चलाएं या कोई अन्य उपयुक्त गतिविधि अपनाएं। वयस्कों के लिए सामान्य लक्ष्य सप्ताह में 150 से 300 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि है। अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत करें। कभी जो हो दर्द कोई तन्हाई में जाके रोले। दूसरा, संतुलित भोजन। अपनी थाली में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और उपयुक्त मात्रा में मेवे शामिल करें। नमक, अत्यधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन कम करें। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। तीसरा, तंबाकू से दूरी। धूम्रपान और तंबाकू

का सेवन छोड़ना दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चौथा, नियमित स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। यदि कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखें। पांचवा, तनाव और नींद का ध्यान, पर्याप्त नींद लें, विश्राम के लिए समय निकालें और ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। ये उपाय हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिम पूरी तरह समाप्त होने की गारंटी नहीं।

0: नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज विश्व हृदय दिवस पर अपने आप से तीन छोटे से सवाल पूछिए। क्या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए रोज थोड़ा समय निकालता हूँ? क्या मैंने हाल ही में अपना रक्तचाप और ब्लड शुगर जांच करवाया है? क्या मेरी जीवन शैली मेरे दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर रही है?

लेकिन इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो आज से ही एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। किसी मित्र को सुबह की सैर पर साथ ले जाइए, परिवार के साथ पौष्टिक भोजन कीजिए और अपने प्रियजनों को भी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दिल की देखभाल केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली से जुड़ी हुई है।

ये दिल ही तो है जो हर पल जीने की वजह देता है, हर धड़कन में उम्मीदों का एक नया सफर देता है। इसे यूं ही ना थकने दें, ना लापरवाही में खोने दें। सेहत की छोटी छोटी आदतों से इसे खुशियों से भरने दें। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज से मुझे यानी उज्ज्वल सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। अब आज का नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। संदेशों के बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
4: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
5: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
3: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
4: अब और भी आसान हो गया है, बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति शेवन रिजवी की गीत रचना, ओपी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम हमसाया।

0: Good night.
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य की गीत रचना प्रीतम का संगीत। बेनी दयाल, शेफाली अलवरीज और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

0: की एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

आशिक बनाया आपने। अब सुनिए इस फिल्म का गाना, समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, केके का गाया।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
1: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में करीब 14 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है संस्कृत दर्शन पार्क अब आकार लेने लगा है। जीडीए ने पार्क में विशेष कार्यों को तेजी से पूरा करने की कवायद तेज कर दी है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अक्टूबर में इसे आमजन के लिए खोलने की तैयारी है। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि यहां हरियाली और मनोरंजन का स्थल नहीं बल्कि यहां आधुनिक अंदाज में भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति और संस्कृत भाषा से परिचय कराया जाएगा। पार्क में वेद उपनिषद महाकाव्य भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य से जुड़े विषयों को थीम आधारित संरचनाओं और आकर्षक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। संस्कृत के श्लोक और सूक्तियां भी पार्क की थीम का हिस्सा होंगी। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना और उनके बीच इसके प्रति रुचि और जिज्ञासा प्रदान करना है। गाजियाबाद के लोहा मंडी स्थित पार्क की बदहाल स्थिति सुधारने और इसे व्यवस्थित स्वरूप देने की कवायद शुरू हो गई है। यूपी सीडा ने पार्क में चार दीवारी, फुटपाथ, दो नस्टिंग हट और अन्य हॉर्टिकल्चर कार्य करने के लिए 1.76 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित एजेंसी 2 वर्ष तक पार्क का रखरखाव करेंगी। जानकारी देते हुए यूपी सीडा के उप महाप्रबंधक सलील यादव ने बताया कि लोहा मंडी स्थित पार्क का सौंदर्यकरण के साथ ही चार दीवारी का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा फुटपाथ के साथ ही 2 नेस्टिंग हट लगाने और हरियाली से पार्क को विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फुटपाथ बनने से पार्क में आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी। पौधारोपण और हरित क्षेत्र में जुड़े कार्यों के जरिए पार्क में सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कार्य को 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक घरिया प्रतिष्ठान की छत पर लगे सोलर पैनल से जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होने पर उपभोक्ताओं के पास उसे ग्रिड में देने व बिल से समायोजन कराने का विकल्प था। जल्द ही इसमें एक और विकल्प जुड़ने जा रहा है। P2P यानी पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग व्यवस्था में सोलर उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त बिजली सीधे पड़ोसी उपभोक्ता को बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू होने वाली इस व्यवस्था की तैयारी चल रही है। इस व्यवस्था में बिजली के लिए अलग लाइन बिछाने की जरूरत नहीं होगी। विक्रेता और खरीदार के बीच लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, जबकि बिजली PVBNL के मौजूदा ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से प्रभावित होगी। हालांकि अतिरिक्त बिजली की बिक्री किस दर पर होगी और ग्रिड शुल्क कितना होगा यह अभी तय नहीं किया गया है। जिले में वर्तमान में 9072 उपभोक्ता नेट मॉनिटरिंग से जुड़े हैं, जबकि करीब 950 उपभोक्ता नेट बिलिंग व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस व्यवस्था को तकरीबन 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली बेचने का लाभ मिलेगा। गाजियाबाद में कुल 11,87,567 उपभोक्ता है। वहीं जिले में 9072 नेट मीटरिंग उपभोक्ता है, जबकि 950 नेट बिलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार P2P व्यवस्था लागू होने वाली है। इस योजना पर कार्य चल रहा है। फिलहाल जरूरत से अधिक अनिल कुमार सिंह अधीक्षण अभियंता जोन प्रथम ने बताया कि उत्पन्न बिजली के लिए उपभोक्ता नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजियाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए निगरानी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर अब अंदरूनी सड़कों पर भी ITMS कैमरे लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस ने इसके लिए 14 स्थानों का चयन किया है। इस सभी स्थानों पर ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों को चालान किए जा सकें। यातायात पुलिस ने कैमरे लगाने के लिए नगर निगम को सूची देकर शीघ्र आगे कार्रवाई की मांग की है।
2: गाजियाबाद में फरवरी 2026 से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे 40 अलग अलग स्थानों पर लगभग 850 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से MV एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ इन कैमरों और PA सिस्टम के माध्यम से हम लोगों में यातायात नियमों से संबंधित जागरूकता इत्यादि का भी हम लोग प्रयास करते हैं।
1: जनपद गाजियाबाद के समायोजन विभाग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादनगर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित ITI परिसर में मेला सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। इसमें टाटा हमदर्द

0: समेत कई नामी कंपनियां अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में 18 से 45 वर्ष की आयु में अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार 12,000 से 80,000 रुपए तक प्रति माह तक वेतन मिलेगा। विभाग के अनुसार रोजगार मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
1: गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सेवा, जन कल्याण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए विभिन्न जन सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले नागरिकों का उत्साह वर्धन करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिला रक्त उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बन सकता है। ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में जन सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा सेवा की भावना को जन भागीदारी से जोड़ना प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक जीवन का प्रमुख प्रेरणा में रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान इसी सेवा भाव को व्यापक जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।
3: 17 सितंबर पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का, गौरव का, उत्सव का दिन बना है। हम सभी देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। आने वाले दिनों में सेवा संकल्प अभियान के और भी जो आयाम है उसमें भी जनता इसी प्रकार से उत्साह से हिस्सा लेगी।
2: जौनपुर जिले में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया गया। जिले को 3 नए अग्निशमन एवं रेस्क्यू वाहन मिले हैं। रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में SP कुंवर अनुपम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को संबंधित अग्निशमन केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जनपद में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दौरान SP कुंवर अनुपम सिंह ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आगजनी एवं अन्य आपात परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
4: जनपद को अग्निशमन संबंधी विभिन्न उपकरण और अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। कटिंग टूल्स भी हमारे पास में है और फोम टेंडर भी हमें एक उपलब्ध हुआ है। इससे जनपद की अग्निशमन क्षमता में काफी वृद्धि होगी।
2: जौनपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लाभार्थियों में उत्साह देखने को मिला है। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले कारोबारियों के लिए ये योजना आर्थिक सहारा बन रही है। योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। योजना के लाभार्थी नीरज गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल ने उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद अब वह मेहनत के साथ अपना व्यवसाय चला रहे हैं और आमदनी बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के मटिहारी केराकत के छात्रों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में आयोजित इंडिया स्पेस वीक प्रतियोगिता 2025 में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भारत अंतरिक्ष सप्ताह नई दिल्ली के सेंट्रल जोन के नेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात कुमार ने पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र नमन भास्कर ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उसके साथ ही साथ विद्यालय की बड़ी संख्या के छात्र छात्राओं ने भाषण, चित्रकला सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। छात्रों ने अंतरिक्ष विज्ञान व उससे जुड़े विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया। डॉक्टर प्रधांशु कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए DRDO, इसरो तथा भारत अंतरिक्ष की स्थापना संगठन कार्यालय प्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरित किया। उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसार सुधार डॉक्टर रमेश चंद यादव ने बताया कि इन दिनों भारी बरसात व अर्नब चक्रवात से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा का योजना के अंतर्गत जो फसल क्षति की सूचना देने वाले योजना के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को विभिन्न डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। अब वह बीमित किसान फसल नुकसान की तत्काल 72 घंटे के अंदर सूचना दें या जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 का प्रयोग कर सकते हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनते हैं देश का अंक।

0: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। जी हाँ, आज हम बात ही अपने जिस्म में एक खास आजा यानी दिल की करेंगे। 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, आलमी यौम कल्ब। तो सामीन, आज हम समाप्त कराते हैं ये खुसूसी प्रोग्राम दिल का आलमी दिन। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा और इतना खूबसूरत नाम दिया। इंसान को सूझबूझ दी, अकल दी, जुबान दी, हाथ पैर दिए, सुनने को कान, देखने को आंखें, सूंघने को नाक, मुंह दिया दांत दिए, जिससे हम जायके लेकर खाते हैं। इसमें एक चीज खास दी जिसे हम दिल, कल्ब और हार्ट वगैरह मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, और सीने के अंदर बाएं जानिब उल्टे पान की शक्ल में एक अंग यानी आजा जिसकी रफ्तार पर खून की गर्दिश होती है वो अता किया। ये दिल जो हमें देता है जिंदगी जीने को। दिल धड़कता है हमारे सीने में और सजाए रखता है ना जाने कितने ख्वाब, कितनी चाह, कितनी ख्वाहिशें। इसी दिल की सेहत के लिए मनाया जाता है दिल का आलमी दिन। इस दिन डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, अदीब वगैरह सेमिनार के जरिए बताते हैं इसकी सेहत के बारे में। इसके बारे में तफसील से बता रहे हैं डॉक्टर मुजाहिद फराज।
1: इंसानी जिंदगी में दिल का किरदार बहुत अहम है। अगर किसी काम के लिए दिल राजी है तो हम जिस्मानी तवानाई को यकजा करके मतलूबा काम को बखुशी अंजाम देते हैं, लेकिन हजरत दिल अगर रूठ जाएं, तो फिर आप लाख कोशिशें करें मगर तबीयत मिजाज दिल के खिलाफ कुछ भी करने को आमादा नहीं होती। कल्ब की अहमियत से वाकिफ होते हुए भी इंसान बहुत नादान वाक़ हुआ है। वो कुदरत के अता करदा इस बेशकीमती आलाई ज़िंदगी की कदर नहीं करता। अपने रात दिन के कामों की वजह से, बेतरतीब निज़ाम ज़िंदगी की वजह से हम स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। इस स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है। स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तंगी वक्त और हासिल शुदा आसाइशों ने हमें इस कदर काहिल बना दिया है कि हम हर काम बैठे बैठे करना पसंद करते हैं। न ताज़ा आबो हवा हमें मैसर है और न पुरसकून ज़िंदगी। ये सभी हमारे दिल को आज़ार देने के लिए काफ़ी थे। सोने पर सुहागा ये कि खाने पीने से मुतालिक हमारी बैड हैबिट्स या ख़राब आदतों ने बेचारे दिल को मज़ीद मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। शहर शहर, करिया करिया, फास्ट फूड कॉर्नर्स की रौनकें मेरी बात की सदाकत के लिए काफ़ी हैं। मुरगन गिज़ाओं की आदत की वजह से हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल

0: कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ रही है, जिसके नतीजे में मोटापा और ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। हवा हो के पानी या फिर ग़िज़ा, सब कुछ इम्प्योर और जहर आलूद है। इसीलिए सारी दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में बेपनाह इजाफा हुआ है। खुद हमारे मुल्क में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक का शिकार होकर लुकमय अजल बन रहे हैं। बकौल शायर, शीशे का एक मकान है कहते हैं जिसको दिल, शीशे का एक मकान है कहते हैं जिसको दिल, ऐ दोस्त बेवफाई से ये टूट जाएगा। बात दोस्त या महबूब की बेवफाई की नहीं, हम खुद अपने दिल के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। अगर हमें अमराज़ कल्ब से महफूज रहना है और अपने दिल को तंदुरुस्त और तवाना रखना है, तो अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन बनाना होगा। घी, तेल, शकर और रेड मीट के इस्तेमाल को कम से कम तर करना होगा। हरी सब्जियों और ताज़ा फलों को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना होगा। सुबह शाम वॉकिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाना ही पड़ेगा। आराम और पुरसुकून नींद के लिए वक्त मुअय्यन करना ही पड़ेगा। ज़हनी तनाव और गैर ज़रूरी तफक्कुरात से दूर रहना इंतहाई ज़रूरी है। दिल की बात, दिल की हिफाजत और उसकी बीमारियों के खतरात से आवाम को बेदार करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है।
1: दिल का आलम दीन को मनाने की एक खास बात ये भी है कि दिल से जुड़ी बीमारियों और स्ट्रोक के बारे में लोगों को इस तरफ होशियार करना ही है। दुनिया भर में दिल की बीमारी के बढ़ते खतरों, उनसे होने वाली अमवात से महफूज करना है। माहिरे कल्ब डॉक्टर ओम शंकर बताते हैं, दुनिया भर में 80% अमवात को रोका जा सकता है, बशर्ते ये कि वक्त से बीमारी का पता चल जाए और इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। आइए जानते हैं फायजा जुबैर साहिबा क्या सोचती हैं दिल के बारे में।
2: दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही न हो तो क्या कीजिए। जी हाँ, दिल की सेहत, दिल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ही, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस सारी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। दरअसल इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह होता जा रहा है, ख्वाह वो बच्चे हों या फिर बड़े। बच्चों की अगर हम बात करें तो आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने रोज़मर्रा के दिगर मशाग़िल में, खुसूसन जो मोबाइल की लत बच्चों को लग गई है, उसमें इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि अपनी सेहत की किस तरह उनको हिफाजत करनी चाहिए, किस तरह सेहत का ख्याल रखनी चाहिए, इस बात की उनको ज़रा भी फिक्र नहीं है। और खुसूसन जो खाने पीने की बच्चों की आदत है, वो उनके दिल को, उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि उनको जब चाहा, जो चाहा, जब भूख लगी उन्होंने वो खा लिया। उमूमन हम देखते हैं कि आज बच्चों को फास्ट फूड बेहद पसंद है। आसानी से और जल्दी बन जाने वाला ये फास्ट फूड सेहत को और खुसूसन दिलो दिमाग को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा बच्चों को कतई नहीं है। बच्चों की हम बात क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों की भी अगर बात की जाए तो इस दौड़ती भागती और मसरूफियत से भरी जिंदगी में बड़े जो हैं वो भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं।
1: ये दिल भी क्या चीज बनाई है इस कुदरत ने, शायरों ने अपनी शायरी में खूब इसका जिक्र किया। हजारों दिल रहे जालिम तेरे उम्मीदवारों में, हजारों दिल रहे जालिम तेरे उम्मीदवारों में, मगर जुल्मों सितम के मुस्तहिक हर बार हम निकले। अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे लिए सामीन को पैगाम दे रहे हैं जनाब अखिल नुमानी साहब।
3: हम दिल की

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार विवेक प्रियदर्शन, इनके स्वर में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार की लिखी एक भक्ति रचना।

सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार थे विवेक प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को भी कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को काफी हद तक कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक चुनौती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ इसका समाधान भी निकलेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है।
1: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ वे सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। $100 billion
0: इन द इयर्स टू कम। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्सहैंडल ADGPI पर पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। ADGPI ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंडिया US फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने आज महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य

सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल ददलानी की गीत रचना, विशाल शेखर का संगीत, के और सुनील चौहान की आवाजें। फिल्म का नाम टैक्सी नंबर 9211।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा एक सदाबहार गीत। धुन तैयार की आर डी बर्मन ने, गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको एक बार फिर सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी की ही गीत रचना, इस बार संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम मर्यादा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धूम 2 फिल्म का ये गाना अलीशा चिनॉय और केके की आवाजों में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं हसरत जयपुरी की गीत रचना शंकर जयकिशन का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं फूलचंद्र और साथियों का गाया देवी गीत।

0: जनक जी और साथियों के गाइस खेमटा के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी अदाकारी से, जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग से, जिसने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों में दशकों तक राज किया। जी हाँ श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं और कुछ

0: पर्दे पर छा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही माहौल बदल देते हैं।
1: रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।
0: बिल्कुल, एक ऐसा कलाकार जिसकी मौजूदगी भर से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसकी आवाज में पहचान है, उनका ये अंदाज याद रह जाता है। लेकिन एक बड़ा कलाकार सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो आपको हंसा सकता है। बड़ा कलाकार वो है जो हंसी के बीच इंसान को महसूस कराए, जो एक छोटे से किरदार को भी यादगार बना दे, जो मुख्य अभिनेता के आसपास रहकर भी अपनी अलग रोशनी कायम रखे, और जब जरूरत पड़े तो कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे तक अपनी प्रतिभा को बिल्कुल लोगों तक पहुंचा दे। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही विलक्षण कलाकार थे, नाम था महमूद।

ये थे महमूद और ये था उनका अंदाज। फिल्म थी भूत बंगला, एक ऐसी फिल्म 1965 में जिसे महमूद ने निर्देशित भी किया था, और इसी फिल्म से आर डी बर्मन के संगीतकार के रूप में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री में। यानी जिस दौर में महमूद दर्शकों को हंसा रहे थे, उसी दौर में वो सिनेमा की भाषा को भी समझ रहे थे। महमूद की खासियत थी कि वो सिर्फ संवाद बोलकर कॉमेडी नहीं करते थे, उनका शरीर बोलता था, उनकी आंखें बोलती थी, उनका चेहरा बोलता था, और सबसे बढ़कर उनका टाइमिंग बोलता था। कॉमेडी में एक सेकंड आगे या एक सेकंड पीछे पूरे दृश्य का असर बदल सकता है, और महमूद इस बात को बखूबी जानते भी थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं थी। महमूद का फिल्मी सफर बहुत ही कम उम्र में शुरू हुआ था, साल था 1943। फिल्म थी किस्मत, जिसमें बाल कलाकार के रूप में दिखाई देने वाले महमूद ने आगे चलकर छोटे बड़े न जाने कितने किरदार निभाए और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक कलाकार का सबसे बड़ा इम्तिहान शायद यही होता है कि उसे दर्शक किस रूप में याद करते हैं। महमूद को दर्शकों ने हंसते हुए देखा, नाचते हुए देखा, गाते हुए देखा, अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक अंदाज अपनाते हुए देखा, लेकिन उनके भीतर का अभिनेता इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनकी कॉमेडी में अक्सर एक आम आदमी दिखाई देता था, उसकी परेशानियां, उसकी मासूमियत, उसकी चालाकी, उसकी कमजोरियां और उसकी जिंदगी के छोटे छोटे सुख और दुख। यही वजह थी कि उनकी कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं बनती थी, वो एक कैरेक्टर बन जाती थी। और फिर आया एक ऐसा गीत जो महमूद की पर्सनैलिटी और उस दौर के सामाजिक नजरिए दोनों को एक साथ सामने रखता है।

0: ताली ताक भूमि ताक ताली ताक जमी ताक झाला अंग ताक झुकी ताक ताली के नदी ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकु तारी ता कोकु तारी के ने ताली झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकु तारी ता कोकु तारी के ने झम तारी झग तारी ताक नाक नाक ताजन ताजन ताजन ताज झम तारी झग तारी जाने जाने कोकु ताजन ताजम ताजन ताक ताक झंग कर दम कर दम कर दम ताक झंग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालां जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

हटूंगा वही इलाकों।

क्या हुआ, 60s में चले गए या फिर 70s में आके अटक गए? जी हाँ, महमूद की यही खासियत थी कि वो कॉमेडी को केवल हंसाने का माध्यम नहीं बनाते थे, कभी वो समाज को आईना दिखाते थे तो कभी अपनी ही छवि का मजाक बना लेते थे, और कभी एक हल्के फुल्के गीत के भीतर ऐसी बात कह जाते थे जो दर्शक के मन में देर तक रहती थी। और फिर साल आया 1968, फिल्म पड़ोसन, एक ऐसी फिल्म जिसमें महमूद का किरदार मास्टर पिल्लई आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार हास्य किरदारों में गिना जाता है। लेकिन पड़ोसन की खासियत सिर्फ महमूद नहीं थे, सामने थे किशोर कुमार, सुनील दत्त, सायरा बानो, और इन बड़े कलाकारों के बीच महमूद ने अपने किरदार को इस तरह से जिया कि पूरी फिल्म की एनर्जी उन तक सिमट के रह गई थी। और फिर आया वो मुकाबला, भारतीय फिल्म संगीत और हास्य का एक ऐसा संगम जिसे सुनकर आज भी मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है।

श्रोताओं, ये सिर्फ एक कॉमेडी गाना ही नहीं था, इसको सिर्फ एक आप हास्य गीत नहीं समझ सकते, बल्कि ये कलाकारों की प्रतिभा का खेल था। मन्ना डे की क्लासिकल पकड़, किशोर कुमार की अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और महमूद की अपनी स्पेशल प्रेजेंस, पड़ोसन में महमूद ने साबित कर दिया कि कॉमेडी कलाकार का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि वो दूसरे कलाकारों के लिए सिर्फ हास्य पैदा करने वाला एक्टर है, वो खुद भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। और यही महमूद के कद की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो स्टार के सामने खड़े होकर भी छोटा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने किरदार को छोटा होने ही नहीं देते थे। बिल्कुल। और महमूद की ये जो जर्नी थी वो यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया, उन्होंने निर्देशन किया, उन्होंने गाने गाए। बॉम्बे टू गोवा कौन नहीं जानता, इस फिल्म में सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन में भी भूमिका निभाई। कुंवारा बाप, जिसमें उन्होंने निर्देशन के साथ एक बहुत ही इमोशनल एक्टिंग की थी, एक मुख्य भूमिका निभाई थी। और कुंवारा बाप खासतौर पर महमूद के कलाकार के रूप को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि वहां हंसी के पीछे दर्द था, एक बच्चे की बीमारी, एक पिता का संघर्ष, और उस संघर्ष के बीच महमूद की कॉमेडी। यही वो जगह है जहां समझ आता है कि महमूद सिर्फ लोगों को हंसाने वाले कलाकार नहीं थे, वो जानते थे कि दर्शकों को हंसाना आसान नहीं है, लेकिन हंसाते हंसाते भावुक कर देना उससे भी बड़ा हुनर है। महमूद ने सिनेमा में अलग अलग तरह के किरदार किए और चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में उनका नाम जुड़ा रहा। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और गीत जिसमें महमूद की स्क्रीन प्रेजेंस फिर से एक अलग रंग लेकर सामने आती है।

श्रोताओं, एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी फिल्मों की संख्या से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसके छोड़े हुए असर से। महमूद ने हिंदी सिनेमा में एक पूरी पीढ़ी को हंसाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कॉमेडियन की भूमिका को एक अलग रेस्पेक्ट दिलाई। उनके दौर में कॉमेडी कलाकार फिल्म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं रह गया था, वो कहानी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका था। वो गीत का केंद्र बन सकता था, वो इमोशनल दृश्य को संभाल सकता था और जरूरत पड़े तो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठा सकता था। यही कारण है कि महमूद की याद आते ही सिर्फ एक मजेदार संवाद नहीं याद रहता, एक डायलॉग भर

तक सीमित नहीं थी उनकी एक्टिंग, बल्कि एक पूरा दौर याद आता है, एक ऐसा दौर जहां सिनेमा में अभिनय था, संगीत था, कहानी थी और कलाकारों के पास अपने हुनर को कई रूपों में आजमाने की आजादी थी। और महमूद के उस रूप की बात जिसे उनकी लोकप्रिय कॉमेडी के पीछे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, निर्देशक महमूद, भूत बंगला, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप के अलावा उन्होंने जिनी और जॉनी, दो दिल वाले, एक बाप छह बेटे, जनता हवलदार और बाद के दौर में दुश्मन दुनिया जैसे फिल्मों के निर्देशन किए। यानी जो कलाकार कैमरे के सामने लोगों को हंसा रहा था, वो कैमरे के पीछे बैठकर कहानी की दिशा भी तय कर रहा था। और शायद यही किसी कलाकार की असली पहचान है, वो एक भूमिका में कभी कैद नहीं रहता। महमूद भी कैद नहीं रहे, उन्होंने अपने लिए रास्ते बनाए, अभिनेता से गायक तक, गायक से निर्माता तक और निर्माता से निर्देशक तक।

कहते हैं कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार वक्त गुजर जाने के बाद भी लोगों की यादों में वैसे ही मौजूद रहते हैं। जी हाँ, महमूद साहब ने हमें हंसाया, लेकिन सिर्फ हंसाया नहीं, उन्होंने हमें बताया कि कॉमेडी भी एक्टिंग है, कि एक हास्य कलाकार भी गंभीर अभिनेता हो सकता है। ये बताया कि एक कलाकार कैमरे के सामने खड़ा होकर ही कलाकार नहीं बनता, वो कैमरे के पीछे बैठकर भी अपनी क्रिएटिविटी को आकार दे सकता है। और शायद इसीलिए महमूद को याद करना सिर्फ उनकी कॉमेडी को याद करना नहीं है, बल्कि उस दौर को याद करना है जब सिनेमा में एक कलाकार की अपनी पहचान एक दायरे में सीमित नहीं रहती थी। और सबसे बढ़कर वो हंसी जो आज भी किसी पुराने गीत के, किसी पुराने दृश्य या किसी पुराने संवाद के साथ अचानक हमारे चेहरे पर आ जाती है, शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। खैर, उनके जाने के वर्षों बाद भी वो एक पल को, कुछ पल के लिए रोक दे, उसे ही कलाकार कहते हैं। मुस्कुराने पर मजबूर कर दे और कहे कि देखिए मैं अभी यही हूं। इसी उम्र मुस्कान, इसी अद्भुत प्रतिभा और इसी बहुआयामी कलाकार को आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत सलाम। आप सुन रहे थे एक कलाकार, और मैं सफर में मैं था आपका साथी अतुल यादव। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो।

0: असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत प्रोग्राम का पहला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खुदगर्ज फिल्म से। इंदिवर का गीत है, राजेश रोशन का संगीत और ये आवाज है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की।

प्रोग्राम का अगला गाना जाबाज फिल्म से हमने लिया है। इंडिवर के गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज सपना की है।

बताओ आज के इस प्रोग्राम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने उनके नाम एक बार फिर से हम आपको बता दें, खुदगर्ज, साहिब, जाबाज, अरमान और डांस डांस। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं ये बताने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। वो नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8004926250।

फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार,

0: निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Neeru Dhanda has made history by becoming the first Indian shooter to win gold medal in the women's trap individual event at the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. 5 new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bagh, cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginnorgarh, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity.

0: University of India's heritage. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has hailed the Paradeep Port team's efforts for its swift joint rescue and execution following a major maritime incident involving a Belize-flagged chemical tanker MT Seagull 9 near Odisha's Paradeep coast. In a social media post, Mr. Sonowal said India's ports are committed to ensuring absolute maritime safety and environmental protection at all times. The Defence Ministry has informed that the vessel was carrying nearly 9,000 metric tons of palm oil with 23 crew members on board. The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and their associated ingredients from September the 29th. World Heart Day is being observed today to raise public awareness about cardiovascular diseases, their prevention and their global impact. In a social media post, Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda has said the day reminds people to recognize warning signs, adopt healthy lifestyle practices, manage risk factors and seek timely care. He informed that the theme this year is Don't Miss a Beat. The minister also renewed his commitment to protecting heart health and preventing cardiovascular diseases. In France, over 160 people were arrested and dozens were injured after high school student protests turned violent yesterday. Teenagers across the country have been blocking their schools since last week to protest overcrowded classrooms, heavy workloads, poor learning materials and a shortage of teachers. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in the forenoon session today. The Sensex dropped 257 points to 72,514, while the Nifty lost 64 points to 22,716 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर और फिर शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात 10:30 बजे। श्रोता अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश सुन सकते हैं दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो पनघट होगा जिसमें आज आहार विशेषज्ञ सुश्री प्रत्यक्षा कटियार से बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रस्तुति प्रदीप कुमार मिश्र की होगी। आप अपनी पोषण संबंधी जानकारियों के लिए अपने प्रश्नों के लिए फोन कर सकते हैं हेलो पनघट कार्यक्रम में। समय एक बार फिर से सुन लें 1:15 से 2 बजे के बीच। 2:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 12:00 का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से 5:00। कलाकार होंगे डॉक्टर राजकुमार। 5:00 का अपना कार्यक्रम युवावाणी 5:15 पर होगा जिसमें आज प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत त्रिपाठी से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा दिल ही तो है। साढ़े छः बजे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम

पंचायत घर सुनेंगे, जिसमें आज रमेश शुक्ल का रामायण पाठ सुनवाया जाएगा। साथ ही जनक जी और साथियों के स्वर में लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। सात बजकर 31 मिनट पर संस्कृत कार्यक्रम होगा, जिसमें आज अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम 7:45 पर होगा, जिसमें गीत और भजन आप सुनेंगे। कलाकार होंगी मीनाक्षी दास। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय होगा 8:00 और फिर 10:20 पर। 8:30 सुनिएगा प्रोग्राम सबरस। और 9:30 का समय होगा गजलों पर आधारित विशेष कार्यक्रम कहकशां का। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, शशि कुमारी, उम्र 19 वर्ष, इकारा मजबूत शरीर, सांवला रंग, चेहरा गोल है, इनकी दोनों आंखों में सफेद छीटी का निशान है। ये ग्राम देवली अमोलवा तेराहा थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 8874102597। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8874102597। अगली सूचना इस प्रकार है, संजना देवी, पत्नी वीरेंद्र कुमार पटेल, उम्र 32 वर्ष, कद 152.4 सेंटीमीटर, चेहरा गोल, रंग गेहुआ है। ये 27 मई 2026 को 2:00 के आसपास पूरे इच्छा का पूर्वा थाना सलोन रायबरेली से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 8127607049। एक और फोन नंबर है 8577959487। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8127607049 और 8577959487। और गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में जो आज की आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, रुचिका यादव, उम्र 17 वर्ष, औसत कद, इकारा शरीर, रंग गोरा और चेहरा लंबा है, इन्होंने रेड स्कर्ट, सफेद शर्ट और गले में लॉकेट पहना हुआ है। ये 21 अगस्त 2026 को 8:20 के आसपास ग्राम कसहन कपूरवा कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से लापता हो गई है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। श्रीमती गुड्डी देवी, पत्नी जीतलाल, निवासी कसहन कापुरवा कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोल सारंग में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का राग हिंडोल सारंग में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी।
2: हम राकेश सिंह भैया मेगा प्रयागराज से बोल रहे हैं मैडम
1: जी। राकेश सिंह जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
2: हमको गाना सुना दिए क्रोध फिल्म का
1: जी।
2: फिल्म है फिल्म।
1: गाने के बोल याद है?
2: हम ममता भरे दिन
1: जी। बोलिए बिल्कुल बोलिए।
2: ये 2-3 साल हो गया मैडम जी, आप लोग भी भारती नहीं चालू करते हैं, हम बहुत उदास हैं।
1: आप उदास मत होइए, बहुत जल्दी आप सब विविध भारती भी सुनेंगे।
2: लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बरोबर मिले सुनने का, बहुत अच्छा।
1: नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का।
2: शारदा प्रसाद जी हैं
1: जी,
2: प्रेम सिसोदिया जी हैं।
1: हाँ जी,
2: आप सभी श्रोताओं के लिए
1: ठीक है। तो सुनिए क्रोध फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं
1: सोनू जायसवाल साहिब पर प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सिकंदर का
0: सिकंदर फिल्म का कौन सा गीत है?
1: कोई अच्छा सा गीत
0: अच्छा,
1: सुनाइए।
0: सिकंदर का कोई भी गीत सुनवा दें, सोनू जी की पसंद है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गांव खोपड़ी जिला प्रतापगढ़
0: जी। रोशनी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए मुझे, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
1: जी मैम थोड़ा जुकाम।
0: अच्छा अच्छा बताइए, जल्दी से रिकवर करिए अपने आप को। इस समय मौसम भी बड़ा ख़राब सा चल रहा है, कभी गर्मी लगती कभी सर्दी लगती, कभी सबके गले खराब हो रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है।
1: जी कभी तो ठंडा मौसम रहता है, कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है,
0: और इसी चक्कर में हम लोग फ्रिज का अक्सर पानी पी लेते हैं, और वही पानी हमें बहुत नुकसान कर जाता है, सबके गले बैठ जाते हैं और गले में खूब दर्द रहता है।
1: जी
0: चलिए अपना ध्यान रखिए, और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी।
1: मैं परदेश फिल्म का गाना सुनूंगी।
0: बोल बताइए।
1: हो गया है मुझे प्यार।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं परदेश फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी क्लब बंदोगरा से पवन निषाद बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दिल का रिश्ता क्या?
0: दिल का रिश्ता का, इसका कौन सा गाना है?
1: कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: चलिए तो आपकी पसंद का दिल का रिश्ता फिल्म का सुनिए ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक जी बात कर रहा हूँ। मैडम जी कैसी है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अशोक जी आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। आकाशवाणी प्रयागराज के परिवार सब
0: जी सब ठीक है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में?
1: दिल्ली एक मंदिर का टाइटल सॉन्ग
0: जी जरूर
1: जाने
0: सुनवाएंगे।
1: वाले की कभी याद आती।
0: दिल
1: दिल्ली
0: एक
1: एक मंदिर
0: मंदिर है ये तो टाइटल सॉन्ग है, इसी को कह
1: जी
0: रहे हैं आप?
1: जी
0: तो आपको जरूर सुनवाएंगे। अगर आपको कोई नाम लेना हो तो ले लीजिए
1: सबसे पहले तो आप घर के सदस्य हैं
0: जी।
1: सुनीता जी, अंकिता जी, बाकी सुनने वाले सभी छोटा।
0: तो आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर है, इस फिल्म का ये गाना।

0: श्रोता अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश अभी सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, जिंदगी की हर खुशी को महसूस करता है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ दिल ही खूबसूरत जिंदगी की पहली शर्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके

0: को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defence, security, trade, investment, energy, technology, healthcare and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor Ambassador Pietro Lazzeri and discussed investment opportunities in India, including through NIIF and GIFT IFSC. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This

0: Rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bagh, cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginnorgarh, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity of India's heritage. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated Parapula Phase 3 corridor, providing a signal-free link between Mayur Vihar Phase 1 and Sarai Kale Khan and improving connectivity between East and South Delhi. He also launched connectivity projects over 1,900 crore rupees. During the inaugural ceremony, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Public Works Department Pravesh Sahib Singh, Urban Development Minister Ashish Sood and other ministers were present. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Neeru Tanda has made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event in the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Huda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal while Rohit Yadav claimed bronze. President Draupadi Murmu has congratulated Neeru Tanda for winning India's first individual gold medal at the Asian Games 2026. And with that, we end this news bulletin.
1: ये इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से. सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और CBSE से कहा है कि वो मौजूदा सेशन में क्लास 6 के तुलबा को 7वीं क्लास के तुलबा की तरह तीन जुबानों की पॉलिसी से इस्तिस्ना देने पर गौर करे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत और CBSE की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से कहा है कि वो क्लास 6 के तुलबा को वही छूट दें जो क्लास 7, 8 और 9 के तुलबा को दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितम्बर को CBSE से कहा था कि वो 2027 शुरू होने वाले अगले तालीमी सेशन से क्लास 6 के तुलबा के लिए तीन जुबानों के लाजमी मुताले की पॉलिसी पर गौर करे जिसमें हिंदुस्तानी निजात दो जुबानें भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो बकाया ट्रैफिक ई चालान को बिजली के बिलों से जोड़ने पर गौर करें, यह कहते हुए कि इस इकदाम से मोसर वसूली में बेहतरी आ सकती है. अदालत ने यह भी तजवीज किया कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तजदीद, मिल्कियत की मुंतकली, फिटनेस और PUC सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद को जेर इल्तवा चालान की अदायगी तक रोक दिया जाए. वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बैदूपुर इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचेंगे ताकि कुशीनगर जिले की तहसील तमकुही राज के तहत जवाही दयाल चैन पट्टी इलाके में सैलाब से मुतासरा लोगों में इमदादी सामान तकसीम करें. इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में मुख्तलिफ अजला से आने वाले लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी. इस मौके पर वजीर आला ने मंदिर के अहाते में वाक़ गाय खाने में गाय की खिदमत भी की. युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 57वीं बरसी और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 12वीं बरसी के मौके पर गोरखपीठ में हफ्तावार खराज अकीदत की तकरीब कल इख्तिताम पजीर होगी. गोरक्ष पीठाधीश्वर और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने काबिल एहतराम गुरु देव महंत अवैद्यनाथ जी महाराज को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करेंगे. गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति ऑडिटोरियम में गोरक्ष पीठाधीश्वर की सदारत में پیش کی جانے والی خراج عقیدت

0: में मुल्क भर के नामवर संत, बाबा और मजहबी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। अवामी खिदमत के जरिए कौम की खिदमत के मंत्र से रहनुमाई करते हुए और मुसलसल वाबस्तगी और अच्छी हुक्मरानी से चलने वाली हुकूमत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए अनथक मेहनत कर रही है। आज इस खसूसी सीरीज में हम ये जानेंगे कि किस तरह जल जीवन मिशन ने देही घरों को साफ पानी फराहम करके जिंदगी को आसान बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित नल का जल पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना ने व्यापक अंतर ला दिया है। जहां योजना के शुरुआत में केवल 3,23,00,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे, वो जून 2026 तक बढ़कर करीब 16 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बताया है।
2: साथियों, जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान।
1: योजना के तहत 7 वर्षों में 12 करोड़ 60 लाख से अधिक घर जोड़े गए हैं। अभय निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा।
0: हिंदुस्तानी शूटर नीरू ढांडा ने जापान में 2026 के एशियाई खेलों में खवातीन के ट्रैप इनफरादी मुकाबले में तलाई तमगा जीतकर तारीख रकम की। नीरू ने फाइनल में 28 हिट लगाकर एशियाई खेलों का नया रिकॉर्ड कायम किया। ये इस इवेंट में हिंदुस्तान का पहला और 2026 के एशियाई खेलों में हिंदुस्तान का 5वां तलाई तमगा है। मौजूदा खेलों में यह हिंदुस्तान का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल भी है। इससे कबल एशियन गेम्स में खवातीन के इनफरादी ट्रैप मुकाबले में नीरू का यह पहला तमगा है। इससे पहले नीरू, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की हिंदुस्तानी टीम ने खवातीन के ट्रैप टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता था। इस मुकाबले में नीरू ने इनफरादी क्वालिफिकेशन में 118 पॉइंट्स हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नीरू टांडा को निशानेबाजी में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बाराबंकी अयोध्या में घाघरा नदी और बलिया में तुर्ती पार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में दरियाए क्वानू और कुशीनगर में दरियाए गंडक भी खतरे की सतह से ऊपर बह रही है। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील इलाके से गुजरने वाले दरियाए नारायणी का पुश्ता कल देर रात पानी के शदीद दबाव की वजह से टूट गया। तकरीबन 25 मीटर का पुश्ता टूट गया, जिससे मकामी बाशिंदों में खौफ और हराज फैल गया। इस शगाफ ने जिले के तकरीबन 2 दर्जन देहात को सैलाब के खतरे में डाल दिया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को मुतासिरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की हिदायत दी गई है। कल देर रात वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर, एडीजी और कुशीनगर के जिला मजिस्ट्रेट से जामे मालूमात हासिल की। उन्होंने फौरी तौर पर राहत और बचाव काम शुरू करने और सभी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। वजीर आला ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत डिजास्टर रिस्पांस टीमों को भी हिदायत दी है कि वो जिम्मेदारी संभालें और वसी पैमाने पर बचाव का काम करें। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो पनघट।

0: सत्यवेनी, अरे ओ सत्यवेनी, अरे हम तो से कहा राम राम।
1: राम राम जया, और अपन पनघट कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी हरिन के
0: जया और सत्या के
1: राम
0: राम। सत्यवेनी,
1: हाँ,
0: आज कुछ विशेष है?
1: बिल्कुल, देखा हम सब तो बैठ के पनघट कार्यक्रम बहनी हरिन के पास मिले आई गई है, लेकिन आज बहनी हरिन का सबसे जोन बटे पसंदीदा कार्यक्रम हेलो।

0: बिल्कुल। देखा, जब हेलो पनघट की बात करी थी तो सबसे पहले तो अपने जो भैया बहनी लोगन है उनके लिए एक विशेष संदेश भी है कि देखा, आज अपन जो कार्यक्रम है, ओके, जो विषय है वो है आपकी थाली में
1: पोषण की खुशहाली।
0: बिल्कुल। और देखा, जब बात पोषण की हो था
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: सबसे पहले तो आहार विहार, खाना पीना। अच्छा, तुका एक बात बताई,
1: हाँ
0: सबसे पहले तो हमारे जो नैना काकी है ना, जो
1: हाँ
0: अपने बगले में रहते,
1: हाँ हाँ
0: तो देखा उनका हम अक्सर ही देखी सत्यविनी कि
1: हाँ
0: इतना उनके अंदर ऊर्जा दिखाई देता। और देखा, चाहे खेते जाए की बात होए, चाहे कहूँ और जाए की बात होए, घरवाओं में उनकी इतनी ज्यादा ऊर्जा और जो है इतनी ताकत है उनके अंदर, ये उम्र में भी लगभग 70-75 की होत हुई है, तब भी देखा इतना फुर्ती से वो काम कर रहे थे कि ना पूछा।
1: अरे जया, तू उनकर फुर्ती देख ली हूँ, उनकर ऊर्जा देख ली हूँ, मुनका उनकर द्वार और आंगन तनी देखू मुने
0: देख,
1: देखा।
0: सत्यविनी, देखा बात तो आगे चलत रही पर देखा अपने पनघटे पे आई है प्रत्यक्षा कटियार जी। और देखा वो आज अपन जो विषय है पोषण की थाली में
1: खुशहाली।
0: खुशहाली, तो देखा उसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, तो देखा अपन श्रोता जुड़ चुके हैं, तो कसना श्रोता जी से जुड़ा जाए।
1: बिल्कुल।
0: हेलो हेलो, हेलो, सत्या बहनी,
1: लागत है कोनो
0: हाँ कुछ
1: कारणवश संपर्क
0: कारणवश,
1: नहीं हो
0: हाँ
1: रहा हवा।
0: संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अपन बात आगे बढ़ो।
1: हाँ
0: देखा तो हम नैना काकी की बात करते रहे।
1: हाँ तो हम
0: हाँ
1: बतावत रहे कि तू नैना काकी का ऊर्जा देख ली हूँ, लेकिन उनकर तनी दुआर देखू, घरे का पिछवार देखू,
0: बिल्कुल
1: पूरा हरी साग सब्जी
0: जी,
1: से
0: से पूरा
1: लदा
0: भरा
1: है
0: है,
1: ना।
0: बिल्कुल सही।
1: हर मौसम के अनुसार सब्जी उनके दुआरे और अंगने में, यहाँ तक कि पीछे बुआन। और साग के तो इतनी शौकीन है इन बहनी, वो कि अगर साग न मिले ना तो अपने कद्दू और लौकी के जो कोपल कोपल पत्तियां रहती ना, वो उहू का खोट के बनाए डालती।
0: देखा सत्या बहिनी, बात जब पोषण की होए तो आहार और विहार अपन कैसे होए, है ना। और देखा अगर पोषण की थाली की बात करी थी तो अपन थाली में कौन तरह की चीजें हुए, हाँ, और कौन उम्र के लोगन के साथ कौन कौन तरह के, मतलब हमका उनका कैसे परोसे का चाहिए, तो देखा ये सब बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो उनकी हमारे दिमाग में चलत है, तो कस ना आज यही पर अपने पनघटे पे हम बुलाए हैं प्रत्यक्षा जी का, तो प्रत्यक्षा जी जो उनकी डाइटिशियन है, और हम सब लोगन का बताई हैं कि कई कौन कौन सी सतर्कता रखे का है, अपन थाली में का पोषण होवे का चाहिए, तो प्रत्यक्षा जी आप हमारे पनघटे पे आई हैं, एक के लिए आपके बहुत बहुत स्वागत है
2: नमस्कार प्रयागराज, और धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए।
0: जी। प्रत्यक्षा जी, जब हम सब लोग बात करब कि पोषण की थाली, तो
1: हाँ
0: सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है आपसे वो है कि हमका आहार और विहार हमार कैसा होए का चाहिए।
2: देखिए, आपने जो विषय रखा है वही है कि हमारी जो थाली गांव की होती थी, जो हमारी पारंपरिक भोजन शैली थी, वो सबसे अच्छी थी। पहले की थाली में आप देखिए कि रोटी भी होती थी, सब्जी भी होती थी, और सब्जियां दो तरीके की होती थी,
0: जी
2: एक हरी पत्तेदार होती थी और एक या तो आपकी जो जमीन में उगती हैं वो वाली, या फिर कोई अलग तरीके की। उसके साथ एक दाल भी होती थी, रायता भी होता था, और सलाद तो बहुत ज़रूरी
0: कुल
2: होता
0: मिला
2: है,
0: के पोषण वाली
2: पोषण
0: थाली।
2: वाली। और अभी आप देखिए कि आप जब खाना भी लेकर के आ रहे हैं या कहीं खाने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ दो ही चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर लोगों की थालियों में, या तो रोटी
0: सब्जी।
2: या फिर चावल, और दाल ही बना लेंगे तो सब्जी नहीं बनाएंगे, सब्जी बना लेंगे तो दाल नहीं बना लेंगे। सलाद तो बहुत कम दिखता है, रायता भी बहुत, पहले के समय में आपको याद होगा खीरे का रायता,
0: आम
2: लौकी का
0: हो,
2: रायता,
0: हाँ आम हुआ करता था
2: हाँ,
0: प्रत्यक्षा जी वो।
2: तो वो सब गायब जो हो रहा है उसी से आज हमारे शरीर में पोषण की कमी हो रही है। पोषण की कमी के साथ साथ अलग अलग तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में हो रही हैं।
1: कहे के मतलब डॉक्टर साहब का जया जय कि आज हम लोग सिर्फ पेट भरे के लिए भोजन कर रहे हैं, है ना,
0: बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य और उसकी पौष्टिकता की ओर नजरें नहीं डाल रहे हैं।
0: देखा सत्या बहिनी, बात जब, हाँ सत्या बहिनी,
1: हाँ
0: अपनी बात का थोड़ा सा विराम दे, और देखा एक कॉलर जुड़ रहे हैं, तो चला
1: हाँ
0: कसना बात कर लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी बोले।
1: हेलो नमस्कार।
2: जी नमस्ते। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ मैं।
2: जी नमस्ते जी, बताइए आपका प्रश्न प्रत्यक्षा जी सुन रही हैं।
1: मेरा नाम राजेंद्र है और
2: जी
1: मैं बताना कहना चाहता कि पोषण के बारे में कि हमें कैसे कैसे खाना लेना चाहिए, सुबह में हमें सबसे पहले खाना क्या चाहिए तो हमारे सेहत।
2: जी, आपकी सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो प्रत्यक्षा जी, इनका
3: सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए हम कहना चाहेंगे कि आप हर प्रकार का भोजन करिए। आपके खाने में
1: जी
3: पहले के समय में चने होते थे, प्रोटीन का आजकल जो रिचेस्ट सोर्स,
2: जी
3: लोग प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप चने लीजिए, दालें लीजिए अलग अलग तरह की। मूंग की दाल आप रात में पहले भिगो करके सुबह उसको अंकुरित अनाज के तरीके लेते थे, वो सब खत्म हो गया है। तो आप सुबह शुरुआत कीजिए अंकुरित अनाज से, या फिर आप उसको उबाल के भी ले सकते हो, बेसन का चिल्ला, मूंग दाल के चिल्ले। तो ब्रेकफास्ट आपका ये हो जाएगा, ये सुबह का। फिर उसके बाद एक फल ले लीजिए। फिर आपके लंच में 2 रोटी, सब्जी, सलाद, रायता, दाल 1 कटोरी। दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मांसाहार करते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, परंतु यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको दालों पर ही निर्भर होना पड़ेगा अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो आप दाल ज़रूर लीजिए शाम के नाश्ते में। अभी देखिए, कोशिश कीजिए जो मौसम में आ रहा वो लीजिए, जैसे अभी भुट्टा आने लगा है। और याद है कि पहले हम लोग लैया चना घर में बना के खा लेते थे, या फिर मूंगफली के दाने। तो ऐसी चीज़ें जो घर से हो, कोशिश कीजिए कि आप कोई भी पैकेट खोल के भोजन मत लीजिए, क्योंकि जितने भी पैकेट फूड होते हैं उन सब को सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें केमिकल्स डालते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। रात का खाना सदैव हल्का लीजिए। हल्के का मतलब आप खिचड़ी ले सकते हो, दाल चावल ले सकते हो, जितना आपने दोपहर में खाना लिया उससे कम 30% मात्रा कम रखिए, क्योंकि रात का खाना जितना हल्का होएगा सुबह आप उतने इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि रात में आपको कोई काम तो करना नहीं है, नहीं तो फिर आपकी गैस की प्रॉब्लम होएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होएगी।
0: देखा जया, डॉक्टर साहब कितना अच्छा बताए प्रत्यक्षा जी
2: जी
0: कि ये जो बताएं कि सुबह अनाज अंकुरित अनाज से हो चाहिए और चना मूंग ये सब बताएं। देखा अगर पुराना भी अगर देखा जाए तो हम लोगन के समय में चना और गेहूं रात में भिगाई के ओका उबाल लेते रहन, है ना।
2: देखा सत्यवनी, जो ना अपन कॉलर जुड़े रहे, देखा उनका आशा है कि उनके सवाल का जवाब मिल गवा हुई। तो देखा प्रत्यक्षा जी से आगे फिर अपन प्रश्न पूछा कि देखा प्रत्यक्षा जी, सबसे पहले तो आज प्रत्यक्षा जी से फिर से सत्यवीर ने देखा एक कॉलर जुड़ रहे, तो कसना चला
0: बिल्कुल
2: जुड़ा जाए।
0: बिल्कुल।
2: हेलो नमस्ते।
4: हेलो
2: नमस्ते, कृपया अपना नाम बताइए जी, कहाँ से बोल
4: हेलो
2: रही हैं? जी,
4: जी जिला मिर्जापुर सुभाकांत बोल रहे हैं, इंदौली से।
2: जी आप अपना प्रश्न, जी अपना प्रश्न बताइए जी।
4: जी जी आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम है सुबह के, हेलो हेलो पनखर कार्यक्रम,
2: धन्यवाद
4: लग रहा है।
2: जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए आगे।
4: जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
2: जी
3: नमस्कार।
4: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे पोषण भरा खाना में हमें जैसे कि का रोटी वोटी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए?
3: किसकी रोटी?
2: रोटी लेना चाहिए।
3: हाँ रोटी बिल्कुल अवश्य लीजिए, और रोटी में विभिन्नता रखिए। पहले के समय में आपको याद होगा सर्दियों में बाजरे की रोटी, गर्मियों में जौ की, ज्वार की, मड़ुआ की रोटी, आप रागी की रोटी, राजगिरा की रोटी, तो अलग अलग तरीके की रोटियां लीजिए। और क्योंकि गेहूं सस्ता होता है तो हम लोग 7ों दिन गेहूं की रोटी खाते हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं कि 4 दिन गेहूं की रोटी खाइए और 3 दिन अलग अलग तरह की रोटी आप अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए।
4: जी जी डॉक्टर साहब, जी जैसे कि हमें लोग को जैसे दाल वाल खाना चाहिए तो मतलब कि फल वगैरह भी लेना चाहिए, दूध दही सब है और केला हो गया।
3: हाँ जी, अगर आप रोटी ले रहे हैं दोपहर में फल लीजिए, 11-12 बजे एक फल ले लीजिए, और फल मौसमी फल होना चाहिए। जैसे अभी केले बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मौसम में जो फल नहीं है आप वो ले रहे हैं। ऐसा यदि आप करेंगे तो आप जो फल ले रहे हैं उसमें पोषण तत्व कम होंगे, ऊपर केमिकल्स ज़्यादा होंगे। और दूध दही भी पहले हमारे खाद्य पदार्थ का हिस्सा था, हमारी शैली में जुड़ा हुआ था, तो वापस से आप दूध दही, यहाँ तक कि घी बहुत ज़रूरी है, अपनी रोटी में घी ज़रूर लगा के खाइए।
2: जी

0: जी जी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्षा जी, देखा हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनकी कितनी सारी जिज्ञासा है खान पान का लेके के, तो देखा कितना अच्छा लगा कि कॉलर हमसे जुड़े। पर देखा अब आपन आगे की बात फिर से शुरू करब कि देखा आज की जो ने जो जिंदगी है बहुत भागदौड़ भरी है, तो ऐसे में जो पोषण की थाली की बात हम सब लोग करी थी ओका कैसे जो ने वो हम कर पाओ कि देखा वो हमारे थाली में सब कुछ होए और व्यवस्थित होए और संतुलित होए।
2: एक बहुत साधारण तरीका आपको बताते हैं, आप अपनी थाली लीजिए उसके चार हिस्से कर दीजिए, ठीक है। एक हिस्से में आपकी रोटी रहेगी। अब अगर आप रोटी ले रहे हैं तो चावल मत लीजिएगा, चावल ले रहे हैं तो रोटी मत लीजिएगा। और एक हिस्से में आपका दाल रहेगा, एक हिस्से में आपकी दो तरह की सब्जियां, और जो चौथा हिस्सा है उसमें आप सलाद रायता।
1: प्रत्यक्षा जी
2: एक और कॉल।
1: हेलो
3: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं सुशील कुमार, जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
1: जी सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी, अपना प्रश्न पूछिए सुशील जी।
3: मेरा ये प्रश्न है कि मैं जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं
1: जी,
3: तो हम लोग लंच टाइम में नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम लोग का क्लास है, तो क्या हम सुबह के आहार में अपना भीगा चना नाश्ता ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल प्रत्यक्षा जी,
2: भीगा चना आप नाश्ते में ले सकते हैं, पर सातों दिन मत लीजिएगा। एक तरीके का आप हफ्ते में चार दिन भीगे चने लीजिए, बाकी के तीन दिन आप क्योंकि लंच नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी या फिर आप चीला अगर मिल सकता है वहाँ पे तो चीला ले लीजिए, डोसा मिल रहा है डोसा, जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो वो आप पूरा भोजन करके आइए। और एक फल ज़रूर अपने साथ लाइए ताकि आप विश्वविद्यालय में जब आपको भूख लगे तो आप वो फल खा लें, अन्यथा जब आपको भूख लगेगी आप बाहर जाएंगे और बाहर कुछ तला भुना या पैकेट का निकाल के खा लेंगे।
1: सुशील जी एक बात और मैं भी पूछना चाहूंगी आपसे कि ये बताइए कि जो है आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं पनघट कार्यक्रम?
3: यस यस यस मैं सुनता बहुत मन से।
1: अच्छा कैसा लगता है आपको?
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम है, सभी के लिए सार्वजनिक, इससे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। मैं एक तो खुद ही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है
1: जी। अच्छा सुशील जी एक प्रश्न मेरा है आपसे कि ये मुझे बताइए कि आप जब आपको कोई थाली ऐसी याद है जो आपने कभी खाई हो और आपको लगा हो वाह ऐसी थाली से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता?
3: यस यस मैं पहले खाया हूँ जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तब।
1: जी चलिए सुशील जी आपने पनघट में पनघट कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवेनी देखा कितना अच्छा लगत है कि देखा जब कितने सारे श्रोता हमसे जुड़ा था और कितने सारे अच्छे अच्छे सवाल हम सबके सामने आवत है।
4: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, कहे कि इस तरीके से हम लोगन के भी मनोबल बढ़त है और हमारे कार्यक्रम लोगन तक पहुंच रहा है और उकर एक सकारात्मक जो है जवाब आवत है,
1: बिल्कुल हाँ,
4: तो इससे बहुत अच्छा लगत है। और प्रत्यक्षा बहनी से हम एक सवाल पूछा चाह कि जैसे कि सबसे बड़ी बात आजकल माताओं के सामने एक समस्या आवत है छोटे बच्चन का भोजन कराओ, है ना?
1: बिल्कुल।
4: छोटे बच्चे बहुत ही खाए पिए में जो है लापरवाही भी करा थीं या फिर बचा चाहा थीं बाहर की चीज़ों से, तो हम आपसे ये पूछा चाहब कि छोटे बच्चों के किस किस उम्र में और कौने कौने समय पर उनका कह तरीके से आहार रहे ताकि उनके पौष्टिकता मिल सके।
2: सबसे पहले छोटे बच्चों को 6 माह तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और आजकल आपने देखा भी होगा कि माँ अपना दूध नहीं देती हैं, पैकेट वाला दे रही हैं जो कि गलत है, इससे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है।
1: पर प्रत्यक्षा जी जब पैकेट वाले फूड की पैकेट वाले दूध की आप बात करें तो हमारा एक प्रश्न ये भी है कि अच्छा तो फिर कैसे दूध की पहचान हुई कि ये अच्छा है बाहर से, यानी खुला दूध यदि लेवा
2: जाए
1: तो?
2: यहाँ हमारा पैकेट फूड मतलब जो आजकल बच्चों के लिए आ रहे हैं ना डब्बे डब्बे और बस घोल के दे दिया
1: जी,
2: उसकी हम बात कर रहे हैं
1: जी,
2: ठीक है। तो 6 महीने तक माँ का दूध अति आवश्यक है। हाँ कभी इमरजेंसी के लिए आप रख लीजिए तो अलग बात है। 6 महीने के बाद हम लोगों का शुरू होता है वीनिंग फूड। वीनिंग फूड मतलब बच्चों को ऐसा तरल पदार्थ बाहर से देते हैं जो उनको ज़्यादा चबाने क्योंकि दांत होते नहीं है।

0: आप जूस निकाल के दीजिए, दाल का पानी दे दीजिए। धीमे धीमे जब उनके दांत आने लगे, तो पहले के समय में रोटी को और दाल को रख दिया जाता था और मीस के बच्चों को खिलाया जाता था। तो आप अलग अलग तरह से उनको इस तरह, मतलब कोई भी जो फूड है उसको थोड़ा सा मस दीजिए ताकि बच्चे आराम से गटक लें।
1: नहीं, ये तो छोटी बच्चों के, जैसे स्कूल जाए वाले,
0: स्कूल जाए वालों के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे फजी ईटर होते हैं, मतलब उनको नया नया चाहिए। तो आप बस खाने में, जैसे बच्चों को पालक की प्यूरी बना करके आटा मार दीजिए तो पूरी हरे रंग की हो जाएगी, तो बच्चे मन से खा लेंगे। तो आपकी उसमें टेक्निक काम करेगी कि आप उसे कैसे खिला लें।
2: प्रत्यक्षा जी, एक कॉलर फिर से जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं जी?
3: मैं सुरेंद्र यादव बांका जलाल फूड से बोल रहा हूँ
2: जी। सुरेंद्र जी नमस्ते, आपका बहुत नमस्ते, बहुत स्वागत है पनघट कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी बताइए।
3: मैम, जैसे मैं बैठा रहता हूँ, पोषण क्या क्या चीज कैसे लेना चाहिए खाने पीने के लिए
2: जी?
0: देखिए, अगर आप बैठे रहते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग स्मोकिंग इज़ अ न्यू सेटिंग। तो कोशिश कीजिए कि 30 मिनट बैठिए, 30 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए टहलिए, ठीक है? लगातार मत बैठिए। लगातार बैठने से आप देखेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ेगा और एक वक्त के बाद आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि
3: आप बता रहे हो वो सही आप बता रहे हो
0: इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो 30 मिनट बैठिए और 3 मिनट के लिए टहलना शुरू कीजिए। दूसरी बात, जो आप अभी खाना ले रहे हैं उसमें 30% खाना कम कर दीजिए, क्योंकि आप बैठे रह रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक बल का तो काम कर नहीं रहे हैं,
3: ये शरीर हीट हो जाती है
0: इसीलिए तो आप पहले सलाद खा लीजिए। सलाद खा लेंगे तो पेट जल्दी भर जाएगा और फिर आप दाल रोटी सब्जी और ये सब चीज़ें कम खाएंगे। तो ये अपना ठीक कर लीजिए। और पानी पीते रहिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि हम इसमें पानी नहीं पीते हैं और फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है।
2: सुरेंद्र जी, आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सुरेंद्र जी, पनघट कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है, मैं बराबर सुनता हूँ। पनघट व गिरी दशमी व हर एक कार्यक्रम 1:15 बजे मैं पूरा सुनता हूँ जी। मैं
2: जी ठीक है सुरेंद्र जी,
3: आपने बराबर कॉल भी मैं करता रहता हूँ, ऐसी वो नहीं है।
2: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। सुरेंद्र जी, और कुछ पूछना चाहते हैं?
3: नहीं जी, हो गए जी। आपका सब लोग का अभिनंदन करता हूँ जी मैं।
2: धन्यवाद सुरेंद्र जी। हेलो प्रत्यक्षा जी, कॉलर जुड़े, प्रश्न भी पूछे, अच्छा लगा कि उनकी भी जो प्रश्न रहा होगा उसका उत्तर उनको मिल गया। पर प्रत्यक्षा जी, सबसे पहले हमारी जो रसोई है, तो रसोई घर में घी, दूध, दही, दही तो फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, पर घी तेल का कितना जो है अनुपात मतलब होना चाहिए और कितना हमारी रसोई घर में उसका सही उपयोग कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस तरह से?
0: घी आप अपने खाने में उतना ही लें कि खाने का स्वाद आए, ना कि सिर्फ घी का है
2: जी। क्योंकि ना अब हम लोग ये भी देखते हैं कि उससे कई बीमारियां भी हो रही हैं घी और तिल की वजह से।
0: देखिए, ये ना पाश्चात्य संस्कृति की फैलाई हुई एक मिथ है, भ्रांति है कि घी से मोटापा बढ़ता है, घी से ये चीजें होती है। घी जरूरी है, पर हम क्या करते हैं कि घी को अधिक मात्रा में लेने लगते हैं
2: जी।
0: अब जैसे आप रोटी में घी लगा रहे हो, तो आप रोटी में सिर्फ इतना लगाइए कि वो लग गया है। दाल में डालने हैं तो बस उतना डालिए कि हाँ ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि घी में दाल है या दाल में घी है
2: जी,
0: ठीक है,
2: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, हमारा किचन पहली प्राथमिक चिकित्सालय होती है। आपका अगर पेट खराब होता है, आपको सर दर्द होता है, तो आप सबसे पहले किचन में दौड़ते हैं। तो किचन का ज्ञान बहुत जरूरी है, मसालों का ज्ञान बहुत जरूरी है, जो आज के समय में विलुप्त हो रहा है
2: जी।
0: और घी, तेल, तेल आप कच्ची खाने का यूज कीजिए। आजकल मार्केट में आप देखिए रिफाइंड आ रहा है, पाम ऑयल ज्यादातर चीजों में यूज हो रहा है, जबकि पाम ऑयल ज्यादा खराब है, पर उसको कोई नहीं कहेगा, घी को सब कह रहे हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जितने भी पैकेज्ड फूड है उन सब में पाम ऑयल है, और यही एक मेजर कारण है कि बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट बन रहे हैं
2: जी।
0: और हार्ट पेशेंट लोगों को हमेशा कहा जाता है कि नमक कम खाइए, वो नमक तो कम खाते हैं लेकिन वो पैकेज्ड फूड खाते हैं
2: जिसमें कि नमक बहुत ज्यादा होता है।
0: आप कभी भी कोई भी पैकेट फूड उठाइए और उसके पीछे की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कीजिए, उसमें नीचे लिखा होता है सोडियम, आप देखें

0: जितना आपके पूरे खाने में नमक होता है उतना आपको सिर्फ वो एक पैकेट में मिल जाता है।
1: बिल्कुल। देख प्रत्यक्षा जी, इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से कई बार जो है जितने लोग होते हैं वो उसको खा लेते हैं, पर सही बात है जो बाहर। प्रत्यक्षा जी, एक श्रोता फिर से हमसे जुड़ रहे हैं, तो नमस्ते
2: नमस्ते मैम, तीनों मैम को
1: जी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है पनघट कार्यक्रम में। आपका आपका नाम और बताइए, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैडम, हम रेखा यादव कुकुरा हडिया प्रयागराज से बोले।
1: जी, नमस्ते, बताइए आपका प्रश्न पूछिए, प्रत्यक्षा जी सुन रही हैं।
2: मैडम जी, जैसे हम खाना जैसे अपने बच्चों को अपने नानी को जैसे बनाते हैं, तो सब सब्जी दाल चावल रोटी सब,
1: जी
2: उन्हें कैसे खिलाएं?
1: जी प्रत्यक्षा जी,
0: देखिए, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, अगर आप उनके साथ बैठ के खाएंगे, बच्चे तब बैठ के खाते हैं जब आप उनके साथ हों। आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे हैं या बड़े, आप बैठिए, बच्चे पीछे से आपके साथ आ जाएंगे। और यदि उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो आप उसको थोड़े रोमांचक तरीके से भी पका सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दाल चावल नहीं खा रहा है, तो आपने दाल चावल की जगह डोसा बना के दे दिया, इडली बना के दे दी। मान लीजिए कोई दाल नहीं खा रहा है, तो दाल के आपने कबाब बना के दे दिए। तो आप अलग अलग तरह से उन बच्चों को ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और सबसे पहले खुद का भी ख्याल रखना है, क्योंकि महिलाएं बच्चों और अपने घर वालों को खिलाने के चक्कर में 2-2 बजे तक भूखी रहती हैं। तो आप सबसे पहले खुद भोजन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ही नहीं सही रहेंगे तो दूसरे भी भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
1: जी। और प्रत्यक्षा जी, अच्छा प्रत्यक्षा जी, एक बात, जब हम अभी घी और तेल की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जैसे मोटापा है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, और जो है मधुमेह है, इन सब चीज़ों में खान पान का जो भी मतलब किस तरह से खान पान को नियंत्रित करना है, थाली में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए और ध्यान रखना है।
0: देखिए, ये जितनी भी आपने तीनों बीमारियां बताई हैं, ये
1: जी
0: थाली से ही आती हैं,
1: जी
0: ठीक
1: बिल्कुल।
0: है। लेकिन विडंबना ये है कि कोई भी हमें थाली को चेंज करने को नहीं बोलते हैं, हमें एक दवाई का टुकड़ा, एक पिल दे दी जाती है।
1: जी
0: तो सबसे पहले आप अपनी थाली को देखिए। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि आपको नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना है।
1: जी
0: आज के समय में सभी लोग बैठ के करने वाली नौकरी कर रहे हैं, कोई शारीरिक परिश्रम हो नहीं रहा है। तो जो आप खाना ले रहे हैं, वो आप उसको व्यय तो कर नहीं रहे, तो वो बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है और आपके शरीर में मोटापा
1: जी वो बढ़
0: बना।
1: जाता है उस
0: जी,
1: रूप में।
0: तो
1: जी
0: अगर आप शारीरिक व्यायाम करेंगे तो मोटापा कम हो जाएगा।
1: प्रत्यक्षा जी, सब लोग कहते हैं कि मोटापा है इसलिए सारी बीमारियां हैं।
0: मोटापा बीमारियों की जड़ हो सकता है, पर मोटापा स्वयं भी एक बीमारी है।
1: जी
0: और मोटापे के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप प्रतिदिन 3 आहार जरूर लीजिए। अपने खाने में फूल, फल,
1: जी
0: सब्जियां।
1: जी
0: फल में कोशिश कीजिए कि अलग अलग तरह के हों, जैसे सेब है, केला है, पपीता
1: जी
0: है, अनानास है। अपनी जो आप रोटी है, रोटी को कम कीजिए, सब्जी दाल बढ़ा लीजिए, सलाद अवश्य लीजिए, रायता लीजिए।
1: जी
0: और रात का मैं आपको एक गारंटी दे दूं कि अगर आप ये रात में सिर्फ डिनर में, मतलब रात के जो डिनर होता है उसमें आप खिचड़ी लेना शुरू कर दीजिए, आपका मोटापा अपने आप ही 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा।
1: अरे वाह प्रत्यक्षा जी, लेकिन हम लोग अक्सर ये मतलब सुनते हैं अपने, अच्छा मुझे इसका हमेशा मुझे ये लगता है कि रात में हम अक्सर सुनते हैं कि रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सही है?
0: दरअसल देखिए, हमारे शरीर, अगर हम आयुर्वेदिक भाषा में बोले तो वात पित्त कफ 3 तरह की बॉडी होती है। तो कई बार होता है दही कुछ लोगों को नहीं पचता है, तो अब जिनको नहीं पच रहा है तो वो दही ना ले, उनको जुखाम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप दही को अवॉइड ही कर दें। और
1: जी
0: दही के लेने के लिए सबसे बेहतरीन समय है दोपहर का खाना।
3: जैसे कि आप ये बताइए प्रत्यक्षा जी, अभी जैसे पौष्टिक आहार की हम बात करते हैं, परंतु कुछ ऐसे सामान्य परिवार होते हैं जहाँ पे हर तरह के जो है पौष्टिक वाली चीज़ें लेना संभव नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक थाली में कैसा होना चाहिए कि जिनमें पौष्टिकता भी रहे और सामान्य रूप से उनका जो है घर गृहस्थी भी चलती रहे।
1: सत्य भी नहीं, अपन प्रश्न जारी रखें, तब तक एक श्रोता जोड़ रहे हैं, तो चला कॉल कॉल ले लिया जाए। हेलो नमस्ते।
4: हेलो, हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते, कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं?
4: नेहा बोल रहे हैं ममकुरगंज से
1: जी। नमस्ते।

0: नेहा जी, नेहा जी बताइए अपना प्रश्न पूछिए।
1: हाँ, ये प्रश्न पूछना था मैम से कि जो है शुगर, जैसे आजकल शुगर में सब फ्रूट्स खाने को मना करते हैं,
0: जी
1: तो कौन कौन सा फ्रूट्स दे सकते हैं शुगर पेशेंट्स को?
0: जी
2: देखिए, शुगर में भी सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप हर तरीके का फल खा सकते हैं, पर आप याद रखिए ऐसे फल जिनमें मिठास ज़्यादा हो। सबसे पहले लोग केला मना करते हैं, लेकिन केला भी आप खा सकते हो। केले के साथ आप काली मिर्च लगा के खाइए। आप आम भी खा सकते हैं, पर आम पूरा नहीं खाइए, आम की एक स्लाइस लेकर के खा लीजिए। कोई भी फल आप खाएंगे तो उससे आपको फ्रक्टोज ही मिलेगा, हर फल में फ्रक्टोज ही पाई जाती है। तो आप हर तरीके का फल खा सकते हैं, पर उसकी क्वांटिटी कम कर लीजिए, ठीक है?
1: ठीक ठीक मैम।
0: नेहा जी, आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं?
1: हाँ जी, हर बार सुनते हैं आपका कार्यक्रम।
0: जी, आपको कैसा लगता है?
1: बहुत बढ़िया, सब लोग एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं।
0: अच्छा नेहा जी, एक चीज बताइए कि क्या आप गाने सुनती हैं और उस वक्त खाना बनाती हैं, खाना गाने सुनते हुए खाना बनाती हैं?
1: हाँ, ये तो हम लोग पे रूटीन में रहता ही है, कोई भी काम कर रहे हो, गाने चल रहे हो, सुनते रहते
0: यानी कि
1: हैं।
0: आकाशवाणी से अब जुड़ी रहती है। धन्यवाद नेहा जी,
1: जी
0: आपने कॉल किया, आपका
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्षा जी,
2: आपका सवाल था कि जो हमारा सामान्य परिवार है,
3: मध्यम वर्ग
2: हाँ
3: का परिवार।
2: मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग के लिए सबसे सही कि आप सुबह उठिए, चने सस्ते मिलते हैं, बेसन भी सस्ता मिलता है। आप सुबह नाश्ते में या तो पोहा बना लीजिए, उपमा बना लीजिए, सेवइयाँ बना लीजिए, चिल्ला बना लीजिए, या उबले हुए चने ले लीजिए। उसके बाद 11-12 बजे की तरफ एक फल उठा लीजिए, फल जो सस्ता हो मार्केट में, जैसे केला सस्ता आता है, 40 रुपये दर्जन मिल जाता है, वो ले लीजिए। आपको एवोकाडो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बजट हिल जाएगा। तो आप एक जो फल मार्केट में आप देखिए जो सबसे सस्ता आ रहा हो, वो फल खरीद के लाइए और वो ले लीजिए। दोपहर के खाने में आप रोटी, सब्जी, दाल, सलाद। सलाद में अब मान लीजिए अभी देखिए मूली आने लगी है, खीरे महंगे हो गए, मूली सस्ती हो गई, तो जो चीज़ सस्ती आ रही है आप वो ले आइए, उसको पकाइए। शाम के नाश्ते में पहले के ज़माने में लइया भुनी हुई खाई जाती
0: जी
2: थी,
0: बिल्कुल,
2: है ना?
0: लाई और चना जो है ज्यादातर ऐसा होता था कि हम लोग जो है लाई चना शाम के वक्त जो है चाय के साथ थोड़ा थोड़ा लिया करते थे। जी
2: तो वो खाइए। और रात के खाने में सबसे सस्ता आहार मूंग दाल की खिचड़ी।
3: बिल्कुल, और सेहत पे भी ज्यादा प्रभाव न पड़ी, थकान ना आएगा, है ना?
0: हाँ
3: क्या ऐसे कि
0: बिल्कुल
3: जल्दी
0: बिल्कुल,
3: फटाफट बन जाए।
0: हाँ देखा सत्या बेटी, इतनी अच्छी अच्छी बात है कि कसना एक जो ने गीत सुन लिया जाए।
3: हाँ,
0: चला

0: देखा जाए,
1: सत्या
0: गीत तो
1: दीदी।
0: बहुत अच्छा रहा है ना।
1: सही बात है, देखा एकदम सुन के जो है मन खुश होएगा ना।
0: और देखा जय प्रत्यक्षा जी, एक हमारे व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है। अच्छा, उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात की।
1: जी
2: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते, कृपया अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम संजय, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी भैया, आप अपना सवाल पूछिए क्योंकि डॉक्टर साहब सुन रही हैं आपकी।
2: जी, मुझे ये जानना था, ये प्रोटीन जैसे डाइट कौन सी हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग ये मांसाहार नहीं करते।
3: ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना वज़न जांचना होगा। वज़न जांचने के बाद जो अभी RDA की नई गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि आप मांसाहार करते हैं तो अपने वज़न में 0.83 का गुणा कीजिए, और जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। और यदि आप शाकाहारी हैं तो उसमें 1 का गुणा कीजिए, जितना आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में प्रोटीन होता है, यहाँ तक कि आपकी रोटी में भी प्रोटीन होता है, आपके दूध में भी प्रोटीन होता है, दही में भी प्रोटीन होता है। तो जो भी आप भोजन कर रहे हैं यदि आप पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं तो उसमें आप गूगल पे कैलकुलेशन का बढ़िया से आजकल चार्ट आ जाता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि या तो हम पूरा आपसे आपका खाद्य पदार्थ पूछे कि आप क्या क्या क्या क्या ले रहे हैं, तो हम आपका जोड़ के, तो जितना भी आपका वज़न है, जस्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, आपका वज़न 70 किलो है और आप शाकाहारी हैं तो आपको प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। और यही आवश्यकता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है कि 1.25 2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, ये पूर्ण रूप से गलत है।
2: जी
3: तो आप अपने दैनिक आहार में अगर आप शाकाहार करते हैं तो दालें अलग अलग तरह की, सबसे जो बहुत अच्छी दाल है वो है सोयाबीन की दाल। यहाँ मैं सोयाबीन न्यूट्रिला की बात नहीं कर रही हूँ, सोयाबीन दाल की बात कर रही हूँ। सोयाबीन
2: अच्छा
3: दाल आप लीजिए, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। यदि आप दाल नहीं खा सकते, दाल को पिसवा लीजिए और उसको अपने आटे में मिला करके आप सिर्फ उसी की ही रोटी बना के खा सकते हैं। अब एक सोयाबीन का अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो सोयाबीन के
2: जी
3: 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आपने 2 रोटी भी उसकी बना बना के खा ली तो आपको 38 ग्राम प्रोटीन एक ही बार में मिल जाएगा।
2: जी जी
3: तो आप इस तरह से अपने खाने में अलग अलग तरह के, क्योंकि हम लोग अगर शाकाहारी करते हैं तो सोयाबीन हुआ, राजमा हुआ, छोला हुआ, काला मसूर हुआ, काला चना हुआ, आपको अलग
2: जी
3: अलग तरह की जितनी भी दालें आ रही हैं उन सब को अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना है। और दालों के साथ साथ आपको अनाज भी लेना है, आपको राजगिरा लेना है, रागी लेना है, जौ लेना है, ज्वार लेना है, गेहूं नहीं बंद करना है। गेहूं में भी जो ग्लूटेन होता है वो भी एक प्रोटीन ही होता है। तो प्रोटीन सब चीज़ों में है, दालों में ज़्यादा होता है, इसलिए हम दालों को पहली प्राथमिकता।

0: बता देते हैं।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद।
2: जया, अब उन्हें तो अपना जवाब मिल गया है। मुना, एक और सवाल है प्रत्यक्षा जी आपसे। आजकल बहुत सी महिलाओं को एक खास तौर पे समस्या उभर के सामने आती है, PCOS जैसी समस्या, है ना? तो आप बताइए कि उन महिलाओं को जिनको ये समस्या है, क्या वो सिर्फ अपने वजन कम करने का ही पर्याप्त भोजन करें, या फिर उसके अलावा भी उनको कैसे डाइट लेना चाहिए ताकि उनको इन सब समस्याओं में, तनाव में कुछ राहत मिले?
3: देखिए, जो PCOD PCOS होता है, अभी इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम हो गया PMOS।
2: जी
3: और ये तब होता है जब हमारे शरीर की सारी जो व्यवस्था, वो अंदर चयापचय की प्रोसेसेस होती हैं, वो खराब होने लगती हैं।
2: जी
3: तो खाने के साथ साथ, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मोटा है तभी उसको ये समस्या होगी, कई बार पतले लोगों को भी होती है। तो आपको नींद बहुत जरूरी है, 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है। जब आप वो लेते हैं तो आपके बहुत सारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर आपके हार्मोन थोड़े भी ऊपर नीचे हुए तो बॉडी की बैंड बजा देंगे। तो नींद बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन व्यायाम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि योगा डे पे हमें फ़ोटो पोस्ट करनी है तो हम कर रहे हैं, आपको प्रतिदिन करना है 30 मिनट प्रतिदिन। अगर आप 30 मिनट प्रतिदिन करेंगे, और क्योंकि महिलाओं को PMOS PCOD, जो PCOS आपने बोला है, वो ज़्यादा होती है। उसका एक कारण ये है कि हम लोग थोड़ा बाहर का ज़्यादा खाते हैं, चटोरे होते हैं,
0: बिल्कुल सही
3: तो
0: बात है।
3: हमें अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। और आप देख रहे हैं कि बाहर इस समय हाइजीन भी नहीं है, और जो भी चीज़ें आप खा रहे हो उन सब में केमिकल पड़े हुए हैं। जैसे आप शाम को अगर ठेले पे निकल के जाएं तो जो बड़े बड़े लंबे लंबे मिलती हैं उनमें देखे हैं लाल रंग की होती हैं, तो वो लाल रंग जो आ रहा है वो केमिकल से ही आ रहा है। तो आपको बाहर का थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल देना होगा और बस।
0: प्रत्यक्षा जी, अब एक फिर से कॉलर जुड़ रहे हैं, तो चलिए कॉल लिया जाए। हेलो, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए
4: हेलो
0: जी। नमस्ते
4: हेलो
0: जी, नमस्ते।
4: हेलो
0: हेलो, नमस्ते।
4: नमस्कार
0: हेलो जी, नमस्ते, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: मेरा नाम ऐश्वर्या है।
0: जी ऐश्वर्या।
4: जया जी, सत्या जी, प्रत्यक्षा जी और प्रदीप जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे।
0: जी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जी
4: मेरा सवाल प्रत्यक्षा जी से है
0: जी
4: कि महिलाओं को पीरियड्स के टाइम उनकी डाइट चेंज होनी चाहिए, और इसमें क्या क्या उसमें चेंज होना चाहिए, मुझे ये जानना है।
3: महिलाओं को पीरियड के समय, सबसे पहले तो महिलाएं, हमारे भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है, तो अपने खाने में आप वो सारे आहार लीजिए जिनमें आयरन ज़्यादा होता है। और तो अपने खाने में जैसे अनार है, आपको जब पीरियड आ रहा है तो उस समय आप अनार लीजिए, आप खजूर लीजिए, आप भीगे हुए मुनक्का या किशमिश लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका खाना बहुत सादा हो, सिंपल हो। हाँ, बीच में कभी कभी कुछ लोगों को क्रेविंग्स भी होती हैं मीठा खाने की, तो उस समय आप खजूर ले सकते हैं, और पीरियड्स के दौरान आप जितना आराम करें उतना बेहतर है।
0: हेलो।
2: जया,
0: हाँ
2: देखो सही बात है कि महिलाओं के इस समय जोन बटे विशेष अपने शरीर का ध्यान देवे के चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल सत्य भी नहीं, कई बार तो हम खुद भी ये बात अनुभव किया है कि प्रत्यक्षा जी, कि जब पीरियड्स का समय चल रहा होता है तो उस समय पे काफी जो उन्हें ऐसा लगता है कि पेट बहुत कमजोर है, या हम जो है कुछ भी भारी खा लेते हैं तो अचानक से महसूस होता है कि अपच जैसा महसूस हो रहा है। तो सही बात है कि इस समय ऐसा महसूस होता है कि थाली अपनी बदलनी बहुत
2: प्रत्यक्षा
0: जरूरी
2: जी,
0: है।
2: जब इस पर चर्चा चल रहा है तो हम आपसे पूछे, जैसे कि 40, 45 या 50 वर्ष की जो महिलाएं होती, एक तरीके से मेनोपॉज का समय रहता है, तो उमन देखा उनके शरीर में काफी बदलाव, चिड़चिड़ाहट, स्वभाव में भी अजीब सा स्विंग करने लगता उनका नेचर, है ना?
0: जी
2: तो उस समय में उनके अपने आहार का क्या तरह के विशेष तौर पे ध्यान रखें?
3: देखिए, जो आपने 40 के बाद का समय बोला है, इसे हम अपने न्यूट्रिशन की भाषा में मेनोपॉज बोलते हैं, और इस समय महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंसान उस समय हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक पे जाते हैं, या फिर तो आपने देखा होगा वो मोटी होने लगती हैं। तो सबसे पहला है कि जब भी आपका 40 आप पहुंचने वाले हैं तो आप 35 से ही एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए।

0: पहली चीज। दूसरी चीज, आपके खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर उपवास रखती हैं, भूखी रहती हैं, तो उनके शरीर में पहले से ही पोषक तत्वों की कमी होती है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैल्शियम के लिए आप रागी ले सकते हो, राजगिरा ले सकते हो, आप दही ज़रूर लीजिए। प्रोटीन बहुत सारी महिलाएं इसको छोड़ देती, कह रहे ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आजकल अगर आप दाल भी नहीं खा पा रहे हो, तो एक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है कि आप वे प्रोटीन खरीद लाइए और उसका एक स्कूप पानी में मिलाइए और पी लीजिए। अपने खाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।
1: सत्या बहनी, देखा प्रत्यक्ष जी, आप हमारे पनघटे पे आई, इतने सारे प्रश्न के उत्तर दिए और सबका जो उन्हें संतुष्टि मिली, तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद पनघट कार्यक्रम में आवे के लिए। सत्या बहनी
2: अब विदा लीजिए
1: जी,
2: राम राम बहनी।

0: आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defence, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।

0: इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और

0: सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो। वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया, उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मरिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरत।

0: बास के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
0: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
0: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
0: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला

0: के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
0: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
0: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
0: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
0: जी,
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
0: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह,
0: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी,
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी,
1: आइए श्रोताओं अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,

0: इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
1: उसने नम्रता से उत्तर दिया।
2: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
1: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
1: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
3: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
1: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
0: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
1: बीरबल ने उत्तर दिया,
0: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
1: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
5: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों

0: पर युद्ध करने का अनुभव था, और तो और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
1: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर बना क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।

0: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
1: जय!
0: भारत माता की
1: जय!
0: फायर!
2: आगे बढ़ो।
3: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
4: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
3: जी सर।
5: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
6: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
5: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
0: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह।
3: जी सर।
0: एलएम जी सवाल मत छोड़, फायर कर। राइट साइड पे फायर कर।
6: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
5: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
7: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
4: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
7: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
0: अच्छा।
3: सर, यही मशीन गन।
4: हुकुम सिंह, एक काम करो।
3: जी।
4: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
3: जी सर।
4: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को। जल्दी करो।
3: जी सर। बांध दिया सर।
4: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
3: हाँ सर, बांध।
4: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
3: जी सर।
4: भारत माता की जय! भारत माता की जय!
6: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के बीच

0: चले गए।
1: संभल कर, संभल कर।
2: सर, सब यहाँ सर टिका लीजिए।
1: सर ऐसे सर।
3: कालिका माता की जय।
4: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
3: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
4: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
3: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
2: साहब,
3: तुम लोग आगे निकलो।
1: ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
3: साहब नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
3: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब,
3: नहीं, नहीं। आदेश। इट्स एन ऑर्डर।
1: सर
3: जाओ। अलविदा, अलविदा दोस्तों।
5: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
4: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
4: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
5: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।

0: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
1: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
0: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,

0: सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
1: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार के स्वर में लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये पचरा।

FM 100.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार के स्वर में लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये पचरा।

इस लोकगीत के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आप सुन रहे हैं योर फेवरेट प्रोग्राम योग वाणी, जहां विचार बनते हैं प्रेरणा और प्रेरणा बनती है परिवर्तन की शुरुआत। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक। साथियों, सोचिए ज़रा, सुबह की शुरुआत होती है सूरज की तेज़ रोशनी से, दोपहर में गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, अचानक बारिश आ जाती है और फिर मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदलता है कि समझ नहीं आता ये मौसम है या मौसम का मूड स्विंग। लेकिन दोस्तों, बदलते मौसम की ये कहानी सिर्फ गर्मी, बारिश या सर्दी की नहीं है, इसके पीछे है एक बड़ी चुनौती, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती। और आज की हमारी बातचीत इसी सवाल पर है, क्या जलवायु परिवर्तन से लड़ना सिर्फ सरकारों का और बड़ी संस्थाओं की ही जिम्मेदारी है? नहीं साथियों, इसमें हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, खासकर युवाओं की, क्योंकि युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, आज युवा के बदलाव की ताकत भी हैं। युवा आज के बदलते समाज की, बदलते परिवेश की, बदलते दौर की ताकत हैं। और हमारी आज की बातचीत का विषय भी यही है, क्लाइमेट एक्शन में युवा, छोटा कदम बड़ा बदलाव। साथियों, क्लाइमेट चेंज का मतलब आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी के लंबे समय के तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाला बदलाव है। इसका एक बड़ा कारण मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। अब ज़रा अपने आसपास देखिए, हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार ज़रूरत ना होने पर पंखा, लाइट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू छोड़ देते हैं, कितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, छोटी दूरी के लिए भी वाहन निकाल लेते हैं, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद हम बिना सोचे कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग इन्हें रोज़ दोहराते हैं तो इनका असर और भी बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि बदलाव की जो शुरुआत होती है ऐसी ही छोटी छोटी आदतों से हो सकती है कि हम इन्हें समझें और उन समस्याओं को अपने जीवन में उतारें और उनके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ें। साथियों, अब एक सवाल, अगर कोई युवा कहे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे एक पौधा लगाने, एक बार प्लास्टिक की बोतल ना इस्तेमाल करने या एक दिन साइकिल चलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जवाब है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बदलाव हमेशा किसी एक बड़े कदम से नहीं आता, कई बार हजारों लाखों छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी दिशा तय कर देते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज के 100 स्टूडेंट ये तय करते हैं कि वो अपने कैंपस में अनावश्यक बिजली की खपत बंद करेंगे, कोई कहता है कि प्लास्टिक की जगह दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतल रखेंगे, कोई पौधा लगाएगा, कोई कचरे को अलग अलग रखने की पहल करेगा और कोई अपने दोस्तों को इन आदतों के लिए प्रेरित करेगा। तो साथियों, एक व्यक्ति की आदत ये शायद छोटी लगे, लेकिन जब वही आदत एक समूह की आदत बन जाती है तो उसका असर बड़ा हो जाता है, बड़ा ही व्यापक हो जाता है। और आज के युवाओं के पास एक और ताकत है, टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मीडियम नहीं है, इसका इस्तेमाल पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। एक छोटा सा वीडियो, एक जानकारी पोस्ट, एक लोकल सफाई अभियान या फिर पानी बचाने और ऊर्जा की बचत से जुड़ी कोई रचनात्मक पहल, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ स्क्रॉल नहीं करना है, कभी कभी सॉल्यूशन भी शेयर करना है और साथ ही सतह पर हमें काम भी करना है। और दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की बात करते हुए हमें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, अपने गांव, कस्बे और मोहल्ले की भी बात करनी होगी। पेड़ लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ पौधा लगाकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना ही जिम्मेदारी पूरी कर देना नहीं होता है, बल्कि असली जिम्मेदारी है उस पौधे की देखभाल करना। साथियों, पानी बचाना है तो सिर्फ विश्व जल दिवस पर पोस्ट नहीं करनी है, रोज़ नल खुला छोड़ देने की आदत हमें बदलनी होगी। बिजली बचानी है तो सिर्फ अर्थ आवर में लाइट बंद नहीं करनी है, बल्कि रोज़ ज़रूरत ना

होने पर स्विच ऑफ़ करना है, अगर जो उपकरण उपयोग में नहीं है उनका हमें स्विच ऑफ़ करना है। यानी पर्यावरण के लिए एक दिन नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम हमें करना ही होगा। ऐसे ही शुरू होते हैं छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, क्लाइमेट चेंज से निपटना सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, सरकारों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, संस्थानों और समाज की भी बड़ी भूमिका होती है। नीतियाँ बने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक परिवहन बेहतर हों, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो, इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन एक जागरूक युवा इन बदलावों का हिस्सा भी बन सकता है और उनकी मांग भी उठा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में जागरूक नागरिक सिर्फ समस्याओं की चर्चा नहीं करते, समाधान का हिस्सा भी बनते हैं। तो साथियों, अब जब आप इस कार्यक्रम को सुनकर अपने दिन की शुरुआत आगे करेंगे तो कोई बहुत बड़ा संकल्प लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है हमें छोटी छोटी शुरुआत करने की, छोटी छोटी पहल करने की। आज से ज़रूरत ना होने पर हम बिजली बंद रखेंगे, पानी को बेवजह इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करेंगे और जहाँ संभव हो पैदल चलिए और साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, कचरे को सही तरीके से अलग कीजिए और सबसे ज़रूरी, इन अच्छी आदतों को अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने समाज में आसपास पहुंचाइए। क्योंकि पृथ्वी को बचाने की कहानी किसी एक सुपर हीरो की कहानी तो नहीं है, ये हम सब की अपनी कहानी है और इस कहानी में युवा सिर्फ एक दर्शक नहीं, मुख्य किरदार हैं। तो याद रखिए, एक पौधा छोटा है लेकिन ये जंगल की शुरुआत हो सकता है, एक बचाया हुआ लीटर का पानी छोटा हो सकता है लेकिन करोड़ों लोगों की जब ये आदत बन जाए तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एक जागरूक युवा छोटा कदम उठा सकता है लेकिन वही कदम किसी दूसरे युवा को प्रेरित भी कर सकता है, और फिर एक से दो, दो से दस और दस से हज़ार और हज़ारों से लाखों बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। यही तो बदलाव की असली ताकत है। तो आइए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ खबरों और चर्चाओं का विषय ना बनाएं, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि धरती हमें विरासत में मिली चीज़ भर नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। दोस्तों, उम्मीद है ये बातचीत, ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। बहुत सारी बातें आगे भी हम करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन आइए सुनते चलते हैं अपने प्रोग्राम का ये पहला गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
5: और हमेशा हमारी फिकर करना।
6: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
4: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
5: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
9: वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट एक्शन में युवाओं की भागीदारी, कैसे हम छोटे छोटे अपने प्रयासों के माध्यम से अपने पर्यावरण को, अपनी क्लाइमेट को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमने बात की कि उसमें तकनीकी का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम इस मैसेज को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब दोस्तों हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं, AI की करते हैं, तो हम जानते हैं आज के दौर में AI हमारे लिए कितना यूज़फुल हो चुका है। और ये AI की वजह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, कैलकुलेशंस हो, कोई इमेज ठीक करना हो, कोई PPT बनाना हो, तो ऐसे ये हमारे सभी काम फटाफट करके दे देता है। और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे सजेस्ट करता है कि जिससे हमारे काम, हमारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। यानी कि हम इस तकनीकी के दौर में AI का सही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो आइए इसी विषय पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है AI के इस दौर में रचनात्मकता पर पड़ता प्रभाव। और वार्ताकार हैं अर्चना शर्मा।
10: कभी कल्पना कीजिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ कुछ ही सेकंड में एक कहानी लिखी जा सकती है, एक तस्वीर बनाई जा सकती है और एक धुन

तैयार की जा सकती है। जी हाँ, यह सब संभव हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से। लेकिन जब मशीनें रचना करने लगी हैं तो एक सवाल स्वाभाविक है, क्या AI हमारी रचनात्मकता को नई दिशा दे रहा है या हमारी मौलिक सोच के लिए एक नई चुनौती बन रहा है? सबसे पहले जानते हैं रचनात्मकता आखिर है क्या। रचनात्मकता का अर्थ केवल सुंदर चित्र बनाना, कविता लिखना या संगीत तैयार करना नहीं है। रचनात्मकता का अर्थ है किसी चीज को एक नए ढंग से देखने की क्षमता। जैसे किसी बारिश को देखकर कोई किसान अपनी फसल के बारे में सोचता है, तो वहीं एक बच्चा उसमें खेलने की खुशी देखता है, एक कवि उसमें कविता देखता है, एक वैज्ञानिक उसमें जलचक्र को समझता है, तो दूसरी ओर एक चित्रकार उसमें रंगों की दुनिया खोजता है। बारिश वही है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें अलग-अलग है। यही रचनात्मकता है। रचनात्मकता हमारे भीतर मौजूद उस क्षमता का नाम है जो सामान्य चीजों में भी असामान्य संभावनाएं खोज लेती हैं। जानते हैं AI के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीकों का समूह है जो कंप्यूटर और मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती हैं जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। AI डेटा से सीख सकता है, भाषा समझ सकता है और चित्रों का विश्लेषण कर सकता है। और आज के जेनरेटिव AI के दौर में नया टेक्स्ट, चित्र, संगीत, वीडियो और अन्य सामग्री भी तैयार कर सकता है। यहीं से रचनात्मकता और AI का संबंध शुरू होता है, क्योंकि जब मशीन कुछ नया उत्पन्न करने लगे तो सामने यह प्रश्न आता है, क्या मशीन भी रचनात्मक है? क्या AI सचमुच रचनात्मक है? AI लाखों करोड़ों उदाहरणों से सीखकर नए संयोजन बना सकता है। वह कविता की शैली समझ सकता है, कहानी का ढांचा बना सकता है, चित्र की शैली बदल सकता है और संगीत की धुन तैयार कर सकता है। लेकिन मनुष्य जब कविता लिखता है तो उसके पीछे उसका जीवन अनुभव हो सकता है, उसका प्रेम, उसका दुख, उसकी स्मृतियाँ, उसका संघर्ष, उसके सपने और उसके सामाजिक अनुभव। AI के पास ऐसी व्यक्तिगत जीवन यात्रा नहीं होती, इसीलिए AI रचनात्मक सामग्री तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मानवीय अनुभव की गहराई का प्रश्न अलग है। AI रचनात्मकता का दुश्मन है या सहयोगी? इसके बारे में जानते हैं। AI को केवल रचनात्मकता का दुश्मन मानना उचित नहीं होगा। इतिहास में लगभग हर नई तकनीक ने रचनात्मकता के सामने नए प्रश्न खड़े किए हैं। जैसे जब कैमरा आया तब लोगों ने पूछा, अब चित्रकारों की ही आवश्यकता क्या रहेगी? जब कंप्यूटर आया तब कहा गया, अब हाथों से गणना करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मनुष्य ने इन तकनीकों को अपने काम में शामिल किया। इसी प्रकार AI भी रचनात्मकता का एक नया उपकरण बन सकता है। अंतर इस बात से पड़ेगा कि हम AI का उपयोग कैसे करते हैं। AI से सामग्री लेना और AI के साथ रचना करना दो अलग बातें हैं। आइए हम इनके कुछ प्रभावों को समझते हैं। विद्यार्थियों के लिए AI सीखने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। कठिन विषय को सरल भाषा में समझना हो, किसी विषय पर विचार चाहिए, भाषा सीखनी हो या लेखन सुधारना हो, AI सहायता कर सकता है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब विद्यार्थी स्वयं सोचना बंद कर देता है। यदि हर उत्तर AI से मिलेगा, हर निबंध AI लिखेगा और हर विचार AI देगा, तो हमारी अपनी सोच का अभ्यास कम हो सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी विद्यार्थियों को AI का उपयोग करना सिखाएं, लेकिन AI पर निर्भर होना नहीं। बच्चे जब चित्र बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वे पेड़ को वास्तविक रंगों में बनाएं, वे हरे रंग का सूरज या नीला हाथी भी बना सकते हैं। यही कल्पना का संसार है। यदि हम बच्चों की हर कल्पना को AI से तैयार करवाने लगें तो वह स्वयं कल्पना करने की प्रक्रिया से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को AI देने से पहले उन्हें

0: कागज, रंग, कहानियाँ, प्रश्न और प्रयोग करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि कई बार रचनात्मकता सही उत्तर से नहीं बल्कि गलत प्रश्न से जन्म लेती है। लेखकों के लिए AI एक नया सहयोगी बन सकता है। AI ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर की तरह काम कर सकता है। लेखक पूछ सकता है, मेरी कहानी के इस पात्र के 5 संभावित व्यक्तित्व क्या हो सकते हैं, या इस कहानी का दूसरा अंत कैसा हो सकता है, लेकिन अंतिम आवाज लेखक की होनी चाहिए। कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, कहानी लेखक की दृष्टि, संवेदना और अनुभव है। इसलिए AI के युग में लेखक की भूमिका समाप्त नहीं होगी, मौलिक दृष्टि की कीमत और बढ़ सकती है। AI ने चित्रकला, डिजिटल आर्ट और संगीत में नए अवसर पैदा किए हैं। कुछ शब्दों के आधार पर चित्र, धुन और रचनात्मक सामग्री तैयार की जा सकती है, लेकिन कला केवल तकनीक नहीं है। किसी चित्र में कलाकार का अनुभव और किसी गीत में मानवीय भावना उसे अर्थ देती है। आज लोग AI से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मानव संबंधों की वास्तविकता अलग है। एक मित्र का कंधा, माँ की आवाज़, पिता का विश्वास, किसी प्रिय व्यक्ति की आंखों में दिखाई देने वाली चिंता और किसी शिक्षक का प्रोत्साहन, इनका कोई डिजिटल विकल्प पूरी तरह नहीं हो सकता। तकनीक संबंधों को सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन संबंधों को अर्थ देने वाली चीज मानवीय उपस्थिति है। भारत के लिए AI एक बड़ी संभावना है। हमारे देश में अनेक भाषाएं, बोलियां, लोक कलाएं और साहित्यिक परंपराएं हैं। AI इन भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायता कर सकता है। पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप दिया जा सकता है, स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार की जा सकती है और शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन AI के युग में आधुनिक होना ज़रूरी है, अपनी जड़ों को भूलना ज़रूरी नहीं। AI के दौर में रचनात्मकता मजबूत रखने के लिए हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। सबसे पहली, जिज्ञासा, हर चीज में प्रश्न पूछिए। दूसरी है अवलोकन, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। तीसरी, प्रयोग, हर प्रयास सफल नहीं होगा लेकिन असफल प्रयोग भी सिखाता है। चौथी है मौलिकता, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी आवाज़ खोजिए। पांचवी और आखिरी, मानवीय संवेदना, तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए समाज मनुष्य ही बनाता है। प्रिय श्रोताओं, तकनीक बदलती रहेंगी, मशीनें और अधिक बुद्धिमान होती जाएंगी, AI और अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना, वह कल्पना जो किसी कागज पर पहली रेखा खींचती है, वह कल्पना जो असंभव को संभव मानने का साहस देती है, वह कल्पना जो वैज्ञानिक, कवि, कलाकार और विद्यार्थी को नया सोचने के लिए प्रेरित करती है। AI हमारे हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन उपकरण का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसे चलाने वाला व्यक्ति उसका उपयोग किस उद्देश्य से करता है। इसीलिए हमें AI से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। AI हमारे विचारों को गति दे सकता है, लेकिन विचारों की दिशा हमें स्वयं तय करनी होगी। AI शब्द दे सकता है, लेकिन उसमें भावना हमें भरनी होगी। AI चित्र बना सकता है, लेकिन उसमें अपना अनुभव हमें जोड़ना होगा, और शायद यही आने वाले समय की सबसे सुंदर रचनात्मक साझेदारी होगी, मानव की कल्पना और मशीन की समता। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और सबसे बढ़कर अपनी कल्पना को जीवित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।
1: दोस्तों, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके नाम में ही कृत्रिम शब्द जुड़ा है, यानी कि उसको बनाया गया है, वो बनावटी है। तो साथियों, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि उसके पास अपना खुद का विवेक, संवेदनाएं नहीं होती। तो इसका

माल हमें ही बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जैसा कि हमने सीखा जाना वार्ता के माध्यम से कि हमें अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, ना कि एक एआई का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्पनाओं को एकदम से रोक देना है। इसे हमें अपनी क्रिएटिविटी को निखारने में उपयोग करना है और भविष्य की संभावनाओं के लिए उपयोग करना है। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली हमें इस वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय था एआई के इस दौर में रचनात्मकता पर पड़ता प्रभाव, और वार्ताकार थी अर्चना शर्मा। आइए आपको सुनवाते चल रहे हैं एक और गीत।

दोस्तों, अपने युवाड़ी के सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज के प्रेरणापूर्ण सेगमेंट की, जिसमें बात कर रहे हैं हम एक ऐसी महिला की जिन्होंने किताबों में पढ़े गए सपनों को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जंगलों के बीच रहकर जानवरों को केवल समझा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेम जेन मॉरिस गुडाल जी की। जेन गुडाल जी का जन्म 3 अप्रैल 1934 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जानवरों और प्रकृति के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने घंटों जानवरों के व्यवहार को समझने और उनके बारे में जानने में बिताए। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटी सी जिज्ञासा आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन जाएगी। साल 1957 में वो अफ्रीका गईं और बाद में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी लुई लीकी के मार्गदर्शन में तंजानिया के गोम्बे क्षेत्र में चिंपैंजी के व्यवहार का स्टडी करना शुरू किया। उस दौर में एक युवा महिला का लंबे समय तक जंगल में रहकर वन्य जीवों का अध्ययन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन जेन ने कठिन परिस्थितियों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। चिंपैंजियों के साथ उनके लंबे अध्ययन ने उनके व्यवहार को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सबके सामने रखी। उन्होंने देखा कि चिंपैंजी केवल सहज प्रवृत्तियों से काम करने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में जटिल सामाजिक संबंध, भावनाएं और सीखने की क्षमता भी दिखाई पड़ती है। उनके शोध ने वन्य जीवों को देखने और समझने के पारंपरिक तरीकों को नई दिशा दी। लेकिन जेन गुडाल की कहानी केवल शोध तक सीमित नहीं है। आगे चलकर उन्होंने जेन गुडाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उनका मानना रहा है कि बदलाव केवल बड़े फैसलों से नहीं आता, किसी एक व्यक्ति का छोटा सा कदम भी परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। और शायद यही बात आज हम सभी युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी सीख है। अपने सपनों को केवल सपना मत रहने दीजिए, उन्हें उद्देश्य में बदलिए। जेन गुडाल का जीवन हमें बताता है कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रास्ता नहीं मिलता, कई बार रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ज़रूरी है कि आपके भीतर सीखने की जिज्ञासा हो, मुश्किलों के सामने धैर्य हो और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी हो। तो दोस्तों, आज अगर आपके मन में कोई भी सपना है, चाहे वो विज्ञान का हो, कला का हो, पर्यावरण का, शिक्षा का या समाज में बदलाव लाने का, तो शुरुआत करने के लिए किसी सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जेन गुडाल की कहानी हमें याद दिलाती है, एक छोटी सी जिज्ञासा अगर जुनून में बदल जाए तो वो पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकती है।

बढ़ रही है दिल की धड़कन, आंधियों धीरे चलो, फिर कोई टूटे न दर्पण, आंधियों धीरे चलो। साथियों, कुंवर बेचैन जी की ये पंक्तियाँ याद आ गईं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उस धड़कन की जो हमारे साथ हर पल चलती है, बिना रुके बिना थके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिल यानी हृदय की। हर साल साथियों 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस दिल के सहारे हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, उसकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियां सिर्फ उम्र दराज लोगों तक ही होती हैं या उम्र दराज लोगों की चिंता ही है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली में युवाओं के लिए भी हृदय स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। घंटों एक ही जगह बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि की कमी कर देना, तनाव, अनियमित नींद और खान पान की गलत आदतें हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रही हैं। तो सवाल है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? शुरुआत बहुत बड़ी नहीं बल्कि बहुत छोटी हो सकती है। रोज़ थोड़ा समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकालिए, पैदल चलना सीखिए, साइकिल चलाना, खेलना या अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। शरीर को सक्रिय रखने की कोशिश कीजिए, खाने में संतुलन रखिए और बहुत अधिक तले भुने यानी प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की जगह पौष्टिक विकल्पों को प्रायोरिटी दी जा सकती है। साथियों, हाल ही में

दिल की सेहत में तनाव और नींद की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पढ़ाई, करियर, नौकरी और भविष्य की चिंता के बीच खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी ज़रूरी है। पर्याप्त नींद और तनाव को स्वस्थ तरीके से संभालना हम आपकी समग्र सेहत के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर किसी को सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी या कोई अन्य चिंताजनक लक्षण महसूस हो तो तुरंत किसी स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेना उचित होता है। तो इस विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल से एक छोटा सा वादा कीजिए, अपनी सेहत को टालेंगे नहीं, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएंगे और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, दिल सिर्फ धड़कता नहीं, ये हमारी हर उम्मीद, हर सपने और हर खूबसूरत पल का साथी होता है।

तो प्यारे साथियों, आज का युवाणी का ये सफर आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर। और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। इसी के साथ साथियों, मुझे अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर

0: विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे गज़लों का कहकशा। रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी प्रसारित होगी। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में अवधेश द्विवेदी

दी का काव्य पाठ होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे मीनाक्षी दास के स्वर में गीत और भजन। रात 8 बजे सुनिएगा विश्व हृदय दिवस पर खास बातचीत, कैसे रखें अपने हृदय को स्वस्थ। इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार से बात करेंगे भूपेंद्र मिश्र। 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सबरस का समय होगा 8:30 का। पंचायत घर कार्यक्रम में रमेश शुक्ल का रामायण पाठ होगा। 6:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल 9:30 पर कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है। 10:00 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी प्रसारित होगी। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन होगा। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में प्रदीप कुमार सिंह से बातचीत होगी। विषय होगा मिट्टी में जिप्सम व पाइराइट का प्रयोग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर कल आप सुबह सुनेंगे सियाटिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथिक द्वारा उपचार, इस विषय पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 7:30 पर पंडित विद्याधर मिश्र का ख्याल गायन होगा। नमस्कार प्रयागराज, कल इस कार्यक्रम में 8:45 पर सुबह आप सुनेंगे डॉक्टर छाया मिश्रा न्यूट्रिशन से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आस्था सिंह के गाए भजन होंगे, वॉइस ऑफ प्रयागराज। ये कार्यक्रम होगा 10:05 पर। 10:30 पर सुनिएगा लोकगीत, कलाकार होंगे घनश्याम और साथी, सविता सागर और उनके साथी, और राधे श्याम निषाद और उनके साथी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन होगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा दिन में 12:30, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। बहने अपना गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर। दिन में 2:30 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:15 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें जीवेश नंदन की वार्ता होगी समाज सेवा का बदलता स्वरूप और युवा। पंचायत घर कार्यक्रम में कल 6:30 आप सुनेंगे राधे श्याम निषाद और साथियों के स्वर में लोकगीत, और उसके अलावा नीति वचन। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा किस्सा गोई, कल की कहानी होगी ताई, लेखक कृष्ण चंद्र, स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। कल 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी आस्था सिंह, इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6:20 होने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: भारतस्य च विश्वसनीय मूल्यवान च सामरिक सहभागीति अवोचत। भारत सऊदी अरेबिया द्वैपाक्षिक निवेश सन्धि विषये वार्तालापस्य सफल समाप्तिं तौ अंगीकृतवन्तौ, यस्योद्देश्यं निवेशार्थं सुदृढं अधिकं पूर्वानुमेयं च संरचना प्रदानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय अधिसूचना निस्सारिता। एतेषु उत्तर प्रदेशस्य 10 आसनानि, उत्तराखण्डस्य च 1 आसनम् अन्तर्भवति। भाजपादलस्य नेतारौ केन्द्रीयमन्त्रिणौ हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी दलस्य नेता रामगोपाल यादवः, बसपा दलस्य रामजी, अन्ये च 6 सदस्याः आगामि नवंबर मासस्य 25 दिनांके स्वकार्यकालं पूरयिष्यन्ति। उत्तराखण्डतः नरेश बंसलस्यापि कार्यकालः अस्मिन्नेव दिने समाप्तिमेष्यति। आयोगेन पश्चिम बंगालस्य 1 रिक्त राज्यसभासनाय अपि उपनिर्वाचनस्य अधिसूचना प्रसारिता। इदं स्थानं तृणमूल कांग्रेस दलस्य संसद सदस्यायाः रुक्मिणी मल्लिकायाः त्यागपत्रेण रिक्तमासीत्। एतेषां निर्वाचनानां कृते नामांकन प्रक्रिया अद्यतन प्रारब्धा वर्तते। मतदानं च आगामि अक्टूबर मासस्य 16 दिनांके सम्पत्स्यते। नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू अवदत् यत् भारतं प्रमुखं वैश्विक विमानयान केन्द्र रूपेण उद्भूतमस्ति, अथ च विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं विमानयान विपणी भवितुं कार्यं कुर्वन्नस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 27+2000 रूट्स एशिया इत्यस्मिन् विषये पूर्वावलोकन वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीनायडू अवदत् यत् भारतस्य लक्ष्यमस्ति यत् 27+2000 वर्तमानस्य 24 कोटितः 30-100 कोटि यावत् यात्रिणां संख्या 6 गुणितं वर्धयेदिति। देशे प्रचाल्यमान विमानस्थानकानां संख्या 14+2000 वर्षे 74 वर्तमानकाले 66+100 अधिका जाता इति मंत्री अवधानं दत्तवान्। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान इत्यस्य विषये प्रवदन् श्रीनायडू अवदत् यत् अनया योजनया संपूर्णे देशे विमानयात्रा सुलभतरा जाता। मंत्री अवदत् यत् आगामी वर्षस्य मार्च मासस्य 16 दिनांकात् नवदिल्ल्यां 27+2000 रूट्स एशिया इत्यस्य 23 संस्करणस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। ऐषमः एशियन क्रीडासु नीरुढांडा इत्येषा महिलानां ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती, प्रथमा भारतीया शूटर भूत्वा इतिहासं निर्ममे। इतः प्राक् सा आशिमा अहलावत, मनीषा कीर इत्येताभ्यां सह महिलानां ट्रैप दल स्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवती। बॉक्सिंग इति मुष्टामुष्टि क्रीडायां परवीन हुड्डा, अंकुश पंघालः च अद्य निशियो इत्यत्र क्रीडायां उपान्त्यचक्रीय विजयैः स्वस्वभारवर्गेषु स्वर्णपदक स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। एथलेटिक्स क्रीडायां पुरुषाणां जैवलिन थ्रो स्पर्धायां भारतं 2 पदके विजितम्। यशवीर सिंह रजतपदकं प्राप्तवान्, रोहित यादव कांस्यपदकं च विजितवान्। पुरुषाणां लॉन्ग जंप इत्यस्मिन् श्रीशंकर मुरली इत्यसः रजतपदकं प्राप्तवान्। 26+2000 वर्षे एशियन क्रीडासु भारतम् आहत्य 50+ पदकानि समर्जितानि इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें।

0: मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचों राम राम। किसान भैया, देखा मौसम बहुत तेजी से करवट बदल रहा बाटे। कहे का मतलब, देखा पिछले 2-3 दिनों में जौन बरखा भई, अब आगे काल से लेके इतना तेज गर्मी बाटे कि मैं भैया अपने बच्चे का जरूरत है, लड़का गदेला के बचावा जाए और साथे साथे जौन आपन पशुधन है उनकर भी सुरक्षा कीन जाए, उनके भी बचावा जाए। जरूरत ये बात का है कि देखा बहुत तेज धूप में नहीं निकला जाए। सवेरे संझा कर थोड़ा बहुत तापमान कम रहता है तो जहाँ भी निकला जाए कम से कम पूरी पूरी बाँह का कपड़ा रहे, शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे, मच्छर मक्खी से बचाव हो सके। यही तरह अगर पशुअन का पशुशाला भी साफ रहे, उनका नाद साफ रहे, उनके बैठे का स्थान, उनके चारा का उत्तम व्यवस्था रहे तो पशु भी स्वस्थ रहें। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि बरखा का मौसम है, अभी ख़त्म नहीं भवा बाटे, तो संक्रामक रोगन का बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही बाटे। तो लड़का गदेला है तो उनके टीकाकरण करवाए दिया जाए, जो पशुधन है उनके भी संक्रामक रोगन से बचे के टीकाकरण का ही उचित समय बाटे। किसान भाई, तो एक थोड़ा ध्यान दे के पशु चिकित्सक का सलाह से जौन भी पशुधन हैं उनके टीकाकरण जरूर करा दिया जाए। हम कहें कि अगर टीकाकरण का बात होता है, स्वास्थ्य का बात होता है, तो एक किसान भैया दिमाग में एक बात आवत है, वो अपन सरकार का चलाई योजना बाटे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का ये विशेषता बाटे भैया कि देखा ये मूल रूप से जौन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी बाटे और प्रमुख रूप से ई टीकाकरण से ही जुटा बाटे। काहे से कि देखा जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर मिशन इंद्रधनुष को बात की जाए किसान भाई, तो 7 रंगन से बन के इंद्रधनुष बनत है। यही तरह से जो 7 जानलेवा बीमारी रही ओके बचावे के खातिर टीकाकरण किया जाए, रोग रोधी क्षमता पैदा हो, जौने से कि लेका गदेला अपने जौन गंभीर बीमारी है उनसे उनकर बचाव हो सके। एकर शुरुआत सन 2024 में 25 दिसंबर 2014 के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से एकर शुरुआत भई रही। तो 7 जौन मिशन इंद्रधनुष में जौन 7 रंग हैं, वही तरह ये जौन स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण अभियान बाटे, मिशन बाटे, इनमें 7 जौन जानलेवा गंभीर बीमारी रहीं उनके टीकाकरण का व्यवस्था भई बाटे। जैसे कि डिप्थीरिया है, एकर टीकाकरण की बात आई, काली खांसी है, एकर रोग रोधी टीका लगावा जाता है, टिटनेस बाटे, एकर भी रोग रोधी टीका मिशन इंद्रधनुष में उपलब्ध बाटे। यही के साथे साथे पोलियो है, ओकर भी टीका लगत है, तपेदिक या टीबी है, खसरा है, और जौन सबसे जानलेवा बीमारी हेपेटाइटिस बी है, ओकर भी टीका जो नौनिहाल हैं, नौनिहाल से लेके 2 वर्ष तक बच्चा हैं उनके लगावे के खातिर ये योजना चली बाटे। बाद के दिनन में, चूंकि अब तो 12 साल हो गया बाटे, बाद के दिनन में जौन एक जापानी इंसेफ्लाइटिस बोला जाता है ओके, और रोटा वायरस एके भी जोड़ दिया गया बाटे कि अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस है या रोटा वायरस है तो ओकर भी रोग रोधी टीका मिशन इंद्रधनुष में उपलब्ध है, ओके लगावा जाए। ये योजना का किसान भैया जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि 2 वर्ष तक जौन भी बच्चा है या गर्भवती महिला

उनके 100% टीकाकरण ई अभियान के तहत किया जाए। गांव गांव द्वारे द्वारे स्वास्थ्यकर्मी हरे जात हैं और ये टीकाकरण का जो लाभ है ओके बतावत हैं और कोशिश ई रहते हैं कि अधिक से अधिक लड़का का देला उनके माता जी लोग उनके टीकाकरण कर दिया जाए जोने से कि गंभीर बीमारी से बचत हो सके। एकर सबसे बड़ी जौन विशेषता रही वो ई रही कि भैया हो जौन टीकाकरण का 10% है, जैसे कि पहले अगर 50% 7% रहे तो टीकाकरण का जौन दर है अपने देश में वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से एक 80 से 90% तक ले जाना है। ई जौन सबसे महत्वपूर्ण योजना रही एक अपन केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर जौन भी इकाई हैं प्रशासनिक इकाई हैं सब एक साथ समवेत रूप में मिलके इपे काम कर रहा बाट और एकर आशातीत सफलता भी मिल रही बाट। तो बस अरदास इतना भी ही है कि जौन भी बच्चा हैं और ये विभिन्न प्रकार के जानलेवा जौन रोग हैं इनका रोगरोधी टीका जौन बाजार में आगे बाटे वो निःशुल्क मिलत हैं या बहुत सरकारी रेट पर बहुत कम पैसा में मिलत हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सेवा जौन मंडल हैं वहाँ जाके जिला अस्पताल पर जाके या मंडलीय चिकित्सालय पर जाके अपने लड़का गदेलन के या गर्भवती महिला बहनी हैं उनके ले जाके जौन आवश्यक है ओके भैया टीकाकरण जरूर करा दें। हम कहें भैया हो बात बत कई होत रहे, आज पंचायती में देखा किसान भाई एक रामायण पाठ है लेकिन परंपरा तो ये है भाई कि गीत गौनई होत है तो अवा विकास गीत सभी मिलके साथे सुन लें जाए।

0: हाँ भैया देखा, गाँव नहीं तो है गई। किसान भैया देखा, समय समय पर हमारे सभी पंचायती में लावा जात है और तरह तरह के लोग आवत हैं और अपन जौन भी धर्म ग्रंथ हैं ओकरे बारे में कुछ कहते हैं। तो आज देखा रामायण पाठ का दिन है, आवा हम सभी किसान भाई मिल के साथे साथे जौन रमेश जी का रामायण पाठ है सुना जाए।
1: सुन।

हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी से सुना था।

वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नामय अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीमित हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।

आए, हरि अवतार है तुझई होई, इथ मिथ्यम कहीं जाई न कोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का ज्ञान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम य तर्क बुद्धि मन बानी, मात हमार यस सुनहि।

जाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखि सुनावऊं तो ही समुझ परै जस कारण मोही, जब जब हो ही धर्म कै हानि, पाणे असुर यदम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं,

तेरा और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरना राखहि निज सुति से तू, जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर हे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सो

का, उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन

0: हाँ भैया देखा, बहुत बढ़िया रामायण पाठ रहे। हम तो कहें किसान भाई समय समय से सब ठीक लागत, तब चला चली की बेला, कल फिर भेंट हुई तो पंचों राम राम।
1: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद। राजेश भैया।
1: हाँ विनय भैया,
0: देखो हम पंच अपनी खेती पाती में मेहनत करी थन और कोशिश करी थन कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होए, फसल मुनाफे के होए, जिससे अपन काम बढ़िया से चलत रहा है।
1: बिल्कुल विनय भैया सही कहो, गाय थे देखो अपन जो खेती पाती रहा थे ना, वो अपने परिवार का जीवन अपन तो चलते है, साथ में तमाम जो जरूरतें होती हैं उनका भी पूर्ति होते है।
0: तो भैया देखो हम पंचन का ये ध्यान रखे के चाहिए कि अगर हम एक फसल के भरोसे रहे, एक काम के भरोसे रहे, तो वहाँ नुकसान या जोखिम के संभावना ज्यादा है। इसके खातिर हमका कृषि विविधीकरण की तरफ जाएगा चाहिए।
1: देखो भैया बिल्कुल सही कहो, कहे थे अपन जब कृषि विविधीकरण किया जाते तमाम तरह के जो लाभ है उसके तरीके से लीन जा सकते हैं।
0: देखो भैया खेती में, हाँ आप तो काम करते हैं कि खेती के सहायक जैसे है मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, औषधि खेती है, अगर इस प्रकार के हम पंच काम करते रहे थे तो इससे होते कि अगर एक फसल में हमारा कोनो नुकसान होगा, घाटा होगा, तो दूसरे से वो जोखिम पूरा हो जाते हैं। और भैया इसके साथ साथ जो अपन बचे वाला समय होते उनका भी सदुपयोग हो जाते, तो समय जो है पैसा के रूप में परिवर्तित हो जाते। तो भैया देखो अपन कृषि विविधीकरण बढ़िया से हो, चीजें अच्छी हो, इसके लिए जरूरत है कि हम सबका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो भैया आज के खबरों के माध्यम से जाना जाए कि कृषि जगत के कुछ खास हलचल का है।
2: सनई के कृषि अवशेष से तैयार रेशा अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया पहुंचेगा। सनई की खेती से निकलने वाले कृषि अवशेष, जिन्हें पहले कचरा समझकर जला दिया जाता था, अब उपयोगी उत्पाद तैयार करने में काम आ रहे हैं। करीब 100 टन सनई के कृषि अवशेष से उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा रेशा तैयार किया गया है। इस रेशे में प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी और फफूंदरोधी गुण पाए गए हैं। इसके उत्पादन में कपास की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तैयार रेशे को अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाजारों में पहुंचाने की तैयारी है। दोनों देशों में निर्यात के लिए समझौते भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से वैश्विक खरीदारों से जुड़ने का अवसर भी मिला है। वर्ष 2021 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कृषि अवशेष का उपयोग कर किसानों के लिए आय के नए अवसर तैयार करना है। इससे करीब 1000 किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया गया है। इस पहल से कृषि अवशेष के उपयोग के साथ किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
0: राजेश भैया।
1: हाँ विनय भैया,
0: कृषि विविधीकरण में हाँ पशुपालन एक बहुत प्रमुख कार्य है जिसका लगभग सब किसान भाई करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहो भैया, कहे से अपने पंच करत हैं, चाहे दूध उत्पादन ले रहे हैं हम देखे थे ठीक है, और दूध उत्पादन साथ में उसके बाद जो अपने जो अपशिष्ट पदार्थ निकले थे वो भैया खेत का पहुँचा देते हैं।
0: बहुत तो, सही कहो भैया, देखो इससे दोहरा लाभ है कि अपन सेहत भी ठीक रहत, खेत की भी सेहत ठीक रहत है, लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अपन पशुधन है ओहू की सेहत ठीक रहे।
1: बिल्कुल भैया सही कहो।
0: तो भैया जैसे कि हम पंचे जन अपन हरा गोरु पाले हैं, उमा लंपी चर्म रोग का है, इसका कारण का है, इसका कैसे निवारण किया जा सकते है, इस बारे में जानकारी दे रही डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश, जहां निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: मेरा सुनने वाले किसान पशुपालक भाइयों बहनों को सादर नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब आजकल लंपी चर्म रोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पशुओं में दिख रहे हैं लक्षण, तो क्या कहना चाहेंगी?
4: हाँ बताना चाहती हूँ कि सरल भाषा में

0: या लंपीचर्म रोग जिसको कहते हैं, ये एक विषाणुजनित संक्रामक बीमारी है। ये वायरस कैप्री पॉक्स समूह का हिस्सा है। ये रोग सामान्यतः गायों और बैलों में सबसे तेजी और गंभीर रूप से फैलता है, और ये जो बरसात का सीजन है और ये जो तापमान है इस वायरस के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, इसलिए ये रोग प्रकट हो जाता है बरसात से पहले।
1: तो डॉक्टर, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे पहुंचता है?
0: देखिए, ऐसा है, जो ये लंपी स्किन डिजीज वायरस है ये हवा के द्वारा ही फैल जाता है। और दूसरा, लंपी वायरस के जो वैक्टर होते हैं, वैक्टर का मतलब ये होता है, सामान्य और सरल भाषा में बताना चाहती हूँ, कीड़े मकोड़े एक पशु से दूसरे पशु में पहुँचाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ, किल्ली, जब कोई खून चूसने वाला कीट किसी संक्रमित पशु को या गौवंश को काटता है तो वह सिर्फ स्वस्थ पशु को काट लेता है, तो ये वायरस अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु के बीच में पहुंच जाता है।
1: तो शुरुआती लक्षण क्या देखते हैं पशुओं में लक्षण?
0: देखिए, ऐसा होता है कि अगर संक्रमण हो जाता है तो उस केस में हमारे गौवंश में तेज बुखार, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तेज बुखार हो सकता है। पशु सुस्त हो जाता है, चारण कम खाता है और या फिर बिल्कुल बंद भी कर सकता है। आंख और नाक से पानी आता है, मुंह से लार टपकने लगता है, और जो सबसे ज्यादा प्रकट होने वाला लक्षण है वह है शरीर पे कांटे, गांठदार दाने बन जाते हैं। बुखार आने के 2-3 दिन के बाद पशु के पूरे शरीर पर, गर्दन, सिर, थन, पैरों के बीच में 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की कड़ी और उभरी हुई गांठे बन जाती हैं। छूने से गांठे काफी सख्त महसूस होती हैं और इसके कारण पैरों में सूजन और लंगड़ापन, और ये सब चलने में पशु को बहुत कठिनाई आती है, गौवंश को, वह तो लंगड़ाने लगते हैं और दूध के उत्पादन में अचानक बहुत कमी आ जाती है। अगर ये इलाज समय पे ना प्राप्त करें तो इन परिस्थितियों में ये गांठे फट भी सकती हैं और गहरे घाव का रूप ले लेती हैं।
1: दरअसल शुरुआती लक्षण अगर दिखे लंपी चर्म रोग की, जैसा आपने बताया कि तेज बुखार, आंख और नाक से पानी, शरीर पर गांठदार दाने, पैरों में सूजन और लंगड़ापन, या दूध उत्पादन में भारी गिरावट के लक्षण दिख रहे हैं, तो पशुपालक भाई बहन करें क्या?
0: देखिए, सबसे पहला काम जो मतलब तकनीकी रूप से होना चाहिए वो है अलग करना, यानी कि आइसोलेशन। या प्रभावित है इस लंपी स्किन डिजीज के, उसको सबसे पहले गांठे या बुखार दिखने पे उसको पूरा स्वस्थ पशुओं से अलग कर दिया जाए उसको, लेकिन हवादार, छायादार ऐसे स्थान पर बांधा जाए तो उसको कहाँ आराम मिलेगा। हवादार, छायादार स्थान पर उसको बांधे, उसका चारा और पानी का बर्तन बिल्कुल अलग कर दिया जाए ताकि अन्य पशु या गौवंश उसका प्रयोग ना करें और हमारे बीमारी का प्रभाव वहीं रुक जाए। और दूसरा काम जो सजेस्टेड है वो ये है, पशु चिकित्सा केंद्र या पशु चिकित्सा अस्पताल से संपर्क किया जाए, और कोई भी दवा जिसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन अपने द्वारा नहीं देना चाहिए। इसका बड़ा खास और टिपिकल ट्रीटमेंट है और वही ट्रीटमेंट मिलने पे ये अपने आप ही सही होना शुरू हो जाता है। करीब करीब 8 से 9 दिन इसकी रिकवरी में लगते हैं। नीम के पानी से सफाई करनी चाहिए त्वचा,
1: यानी नीम की पत्तियों को उबाल करके।
0: जी जी, उबालना चाहिए। जब पानी गुनगुना रह जाए तो उसे पशु के शरीर और घावों को साफ कर सकते हैं। और यदि गांठें फूट गई हैं, नारियल के तेल में कपूर मिला के या हल्दी मिला के या नीम का लेप मिला के अगर घावों पे लगाया जाए तो मक्खियां भी नहीं बैठेंगी। और मक्खियां ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसको प्रभाव को आगे बढ़ाती हैं और कीड़े नहीं पड़ेंगे घाव के अंदर।
1: पोषक और सुपाच्य चारा भी देना पड़ेगा?
0: जरूर, पोषक और सुपाच्य चारा ही आहार जब हम देंगे तो कड़ा चारा नहीं देना, मुलायम चारा दें, क्योंकि पशु उस वक्त बीमार होता है। चोकर, दलिया, गुड़ और खनिज मिश्रण देने चाहिए ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और पानी में थोड़ा गुड़ और नमक मिला के अगर देंगे तो शरीर में पानी की कमी और डिहाइड्रेशन पैदा नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में न फैले, इसके लिए पशुपालन निदेशालय क्या कृत संकल्पित है?
0: देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारा कदम उठाए हैं कि जिस स्थान से ये बीमारी पाई जाती है उसको हम रिंग वैक्सीनेशन किया

जाता है और लाखों पशुओं को प्रतिरक्षित किया गया है इस रिंग वैक्सीनेशन से। अन्य राज्यों से जहां हमारी सीमा लगती है वहां पर जो है हम बेल्ट वैक्सीनेशन करते हुए वहां से भी अपनी रोक लगाते हैं ताकि बीमारी यहां की उधर न जाए और उधर की इधर न आवे, उसको रोक लगाया जाता है। वह सरकार के द्वारा पशु व्यापार और पशु मेलों के भी तत्काल अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है ताकि संक्रमित पशु दूसरे क्षेत्रों में न पहुँचे। और ब्लॉक स्तर पे रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन सरकार द्वारा जिले और विकास खंड स्तर पे टीमें गठित की गई हैं। सूचना मिलते ही ये टीमें अपने काम से लग जाती हैं, दवा वितरण और छिड़काव कराती हैं और टीकाकरण कराती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा भी चालू कर रखी है, जो कि किसान भाई बहन सीधे 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा को अपने जिला पशु चिकित्सालय के कंट्रोल रूम को फोन करके मोबाइल वेटरनरी यूनिट को अपने गांव में अपने द्वार पे बुला सकते हैं। और इसके अलावा प्रदेश स्तर पे भी हमने अपना कंट्रोल रूम का नंबर 1800 121 51

0: और टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा भी चालू कर रखी है, जो कि किसान भाई बहन सीधे 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा को अपने जिला पशु चिकित्सालय के कंट्रोल रूम को फोन करके मोबाइल वेटरनरी यूनिट को अपने गांव में अपने द्वार पर बुला सकते हैं। और इसके अलावा प्रदेश स्तर पे भी हमने अपना कंट्रोल रूम का नंबर 1800-121-5141 जारी किया हुआ है। गौशालाओं की विशेष निगरानी की जा रही है, नियमित सैनिटाइजेशन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है।
1: सब जो लंपी चर्म रोग से प्रभावित जानवर हैं, क्या उनको एलएसडी का टीका लग सकता है?
0: कभी भी बीमार पशु को जो बुखार है और गांठें पड़ गई हैं, उसको टीका कदापि न लगवाएं, कभी भी नहीं लगाया जाता है। हाँ, अन्य पशुओं को टीका लगाया जा सकता है, प्रभावित पशु को टीका नहीं लगेगा, उसका इलाज किया जाएगा।
1: सब जो स्वस्थ जानवर है वो लंपी चर्म रोग से प्रभावित न हो, उनसे संक्रमित न हो, इसके बचाव के कौन कौन से उपाय पशुपालक भाई बहन कर सकते हैं?
0: सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि टीकाकरण सुनिश्चित हो, और नंबर दो ये है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया बनी रहे पशु की, तो उसको आहार बहुत अच्छा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ और उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहे। यही एक थंब रूल या गोल्डन रूल होता है किसी भी पशु का, कि नेचुरली वो अपनी बीमारियों से लड़ ले, और टीकाकरण इसमें सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
1: सब पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मैं आपको कंट्रोल रूम का नंबर बताना चाहती हूँ। एक तो हमारा 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा नंबर है, और इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम का नंबर जो है 1800-121-5141 नंबर है, जिस पर वे बिल्कुल निसंकोच कभी भी कंट्रोल रूम को कॉल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा, आज आपसे बात हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में पशुओं में लंपी चर्म रोग के लक्षण दिख रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के पशुपालक भाई बहन कैसे सतर्क रहें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: तो राजेश भैया।
3: हाँ विनय भैया।
5: बात देखो कुछ हो जाए बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी खास हुआ हो तो अपने कार्यक्रम में है बात गीत गाने के।
3: बिल्कुल भैया, कहा जब मनोरंजन हो जाते हैं अपने पंच माचा पर बैठे होते हैं और सुनत हैं गीत गाने तो और निक लागत है।
5: तो भैया देखो, पंचन के स्वस्थ मनोरंजन के खातिर आज सतीश चंद्र श्रीवास्तव और उनके साथी एक गाने गा रहे हैं, तो एक आनंद लीन जाए।

0: तो राजेश भैया
1: हाँ बिनय
0: गौना
1: जी।
0: ही सुनकर भाई हमार मन तो प्रफुल्लित हो
1: अरे
0: गया।
1: भैया हम झूम गए अपने पंचों भी झूमत हुई हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और देखो राजेश भैया एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अपन पंच भाई हैं कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं खेती में, कुछ नई चीज़ ला रहे हैं, तो हम सबकी कोशिश रहा था कि इस पंच बहन के यहाँ अपने माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से ने और तमाम श्रोता पंचन तक का उनकी बात पहुँचाई जिसे लोग प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। तो आज के किसान हैं राम भजन राय भैया, और ये जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी जो औषधीय फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं, तो जाना जाए इनके बारे में है और इनके अनुभव के बारे में है।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गाजीपुर जनपद के बाराचौर ब्लॉक के करीमुद्दीनपुर गांव, जहां औषधि खेती से जुड़े राम भजन राय भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। राम भजन भैया नमस्कार।
3: प्रणाम डॉक्टर साहब।
2: भैया आप औषधि फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कब से शुरुआत हुई?
3: डॉक्टर साहब पहले तो हम लोग अपने परिवार के साथ धान गेहूं या ट्रेडिशनल खेती करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये हम खेती करने लगे, इसमें प्रॉफिट थोड़ा उससे अधिक होता है इसलिए इसकी खेती करने लगे डॉक्टर साहब।
2: तो कहीं से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप पारंपरिक खेती के अलावा औषधि खेती की ओर मुड़े?
3: डॉक्टर साहब मैंने अध्ययन किया कि दो ही चीजें पैसा मिलता है अधिक, पलन में चिकित्सा है, दूसरे बाद शिक्षा है, तो हमने सोचा कि जड़ी बूटियों से ही ये सब दवा बनती है, इनसे क्यों न खेती किया जाए। तो हमने पत्रिकाओं का अध्ययन किया, अन्य सब यूट्यूब पर देखा, सब अध्ययन किया, पीडीएफ फाइल अध्ययन किया, पढ़ा, तो उसके बाद हमें ज्ञान हुआ कि नहीं इन सब फसलों की खेती किया जाए तो धान गेहूं चना मटर इससे अधिक फायदा होगा।
2: तो रकबा कितना है औषधि फसलों की खेती का आपका?
3: 2 एकड़ है डॉक्टर साहब वर्तमान समय में, इसे आगे बढ़ेगा। और
2: कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: इसमें मंडू पानी है, और मंडू पानी जिसे ग्रामीण प्रयास किए है लेकिन असली ब्राह्मी इसे नहीं कहते हैं, एक जल ब्राह्मी है जो असली ब्राह्मी कही जाती है और एक कृष्ण पर्णी है।
2: यानी ये दोनों मंडूक पर्णी की वेरायटी है?
3: बकुबा मुनरी जिसे ब्राह्मी कहते हैं, जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी दोनों एक ही परिवार की है, लेकिन इनकी इनकी अलग अलग उपयोगिता है।
2: जैसे
3: अधिक डिमांड होती है जल ब्राह्मी की, जिसे उपयोगिता होती है, इसे न्यूरो में काम करती है, इसकी जड़ी बूटी से बनती है, टॉनिक बनता है, ब्रेन टॉनिक बनता है, या अन्य सब चर्म रोग में भी आती है, बीपी भी की दवा बनती है इसे।
2: और मंडूक पानी?
3: मंडूक पानी से भी आती है लेकिन उतनी काम नहीं करती है जितनी जल ग्रामी करती है।
2: ये बताएं कि इसकी बुआई या रोपाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: पहले गहरी जुताई करवाते हैं, गहरी जुताई

0: करवाने के बाद इसमें पाटा भी लगवाते हैं, दो तीन बार जो जुताई करवाने के बाद इसमें घास उस न रह जाए तब इसमें किसी कार्य किया जाता है, लगाया जाता है पौधों को।
1: तो किस महीने में शुरुआत करते हैं जल ब्राह्मी यानी बकोपा की और मंडूक पर्णी की?
0: तो इसके जून से अगस्त तक है लगाने का समय है, जब भी किसान भाइयों को इस समय मिले तो जून से अगस्त के बीच में लगा सकते हैं इसको।
1: आपने कब लगाया?
0: हम तो जुलाई क्लास में लगाया था डॉक्टर।
1: इस साल?
0: जी।
1: तो लगाने में कुछ खास बारीकी करते होंगे?
0: नहीं डॉक्टर साहब, इसको रोपाई करवाई जाती है इन फसलों की, और जिसको कृष्ण पर्णी कहते हैं, कृष्ण पर्णी ब्रकास्टिंग में सबसे छिड़कवा भी से किया जाता है, तो उसकी फसल इसके बाद वाली सीजन में लगाई जाती है जो नवंबर दिसंबर के करीब।
1: अच्छा, तो अभी क्या कृष्ण पर्णी की तैयारी में है आप?
0: अभी उसमें कुछ हमारे धान वन लगाया गया है, उसमें कटिंग जो कटाई हो जाएगी तो उसमें लगाएंगे।
1: लेकिन इस समय आपके खेत में 2 एकड़ जल ब्राह्मी यानी बकोपा और मंडूक पर्णी तो है ही है।
0: जी जी।
1: फसल कैसी चल रही है?
0: फसल तो अच्छी चल रही है साहब।
1: खड़ी फसल में कौन कौन सी खास देखभाल करते हैं?
0: इसमें निराई गुड़ाई ज्यादा करना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, अगर पानी बरसात न हो तो पानी की मात्रा अधिक लगती है इसमें दोनों फसलों में, तो पानी जल प्रबंधन हमको करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ती है, खाद भी देना पड़ती है, ये सब करना पड़ता है।
1: क्योंकि औषधीय फसलें हैं, आपकी कोशिश होती होगी कि अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें?
0: बर्मी कंपोस्ट या जो और डंप खादें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है डॉक्टर साहब।
1: अच्छा, ये बताएं कि इनकी कटाई कब से चालू होती है?
0: पाई के करीबन पहली तो होता है 6 महीने बाद, बकोपा जिसे हम जल ब्राह्मी कहते हैं उसके 6 महीने बाद कटाई होती है, और मंडूक पर्णी जिसे सेंट्रला सेटिका कहते हैं इसका भी 6 महीने बाद होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे मंडू पर्णी कहते हैं हर 2-3 महीने के बाद कटिंग हो सकती है, लेकिन जल ब्राह्मी की कटिंग हर 6 महीने के बाद करनी पड़ती है।
1: यानी हर 6-6 महीना पे बकोपा की कटिंग होती है, और पहली कटिंग मंडूक पर्णी में 6 महीना और उसके बाद 2-3 महीने के अंतराल पर?
0: हाँ जी जी डॉक्टर साहब, इसका कटिंग होता है।
1: और कोई महत्वपूर्ण बात जो औषधि फसलों में बकोपा और मंडूक पर्णी के साथ आप महसूस कर रहे हो?
0: और इस साल हमने यहाँ टेस्ट किया था ये कैमोमाइल भी हमारे धरती पर अच्छी होती है, और इसलिए इसका भी विचार बना रहे हैं कि कैमोमाइल भी कुछ लगाया जाए,
1: यानी आगे रकबा बढ़ाएंगे।
0: जी जी।
1: ये कितने सालों से आप जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी कर रहे हैं?
0: मंडूक पर्णी तो अगले 2 सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल जो 2020 में आया था उसमें उसी साल से इसका कर रहे हैं
1: जल ब्राह्मी।
0: जी, जल ब्राह्मी 2020 से कर रहे हैं, और इसको 2 साल पहले से कर रहे हैं इसको
1: मंडूक पर्णी को।
0: जी जी।
1: तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है बकोपा यानी जल ब्राह्मी की और मंडूक पर्णी की? उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा साल में होता कितना है?
0: डॉक्टर साहब, इस मंडूक पर्णी में लगभग 40-50 हजार रूपए खर्च आता है और 1-1.5 लाख रूपए बच जाता है पूरे साल में।
1: और मंडूक पर्णी में?
0: मंडूक पर्णी की बात कर रहा था, और ब्राह्मी की बात है, ब्राह्मी वो उसमें भी 40-50 हजार रूपए खर्च आता है, तो इसमें 1 लाख से कम कुछ बचता है, 90 हजार 85 हजार ऐसे कुछ बचता है सर।
1: तो कुल मिला जुला करके आप औषधि फसलों में जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी की खेती करके खुशहाल हैं?
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए ठीक है करने में, और अन्य किसान भी इसके कर सकते हैं।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है औषधि फसलों की खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: डॉक्टर साहब, एक बात इसमें रुकावट बनेगी, पहले इसकी मार्केटिंग देखा जाए, मार्केटिंग अगर सही नहीं कर पाएंगे, बाजार नहीं पहुंच पाएंगे, तो सारी किया हुआ बेकार चला जाएगा।
1: जो औषधि फसलें आप तैयार करते हैं उसको बेचते कहाँ हैं?
0: हमारा तो करने से पहले हम 7-8 साल तो इस बारे में गहन अध्ययन किया कि कहाँ कहाँ दिखेगी, तो जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं इनसे हमारा संपर्क हो गया है और इनसे अपना माल हम बेच लेते हैं सर।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 72-75-46-76-30 72-75-46-76-30 72-75-46-76-30
1: पूरे साल में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी 2 एकड़ औषधि फसलों की खेती से?
0: लगभग 2 लाख के आसपास हो जाता है सर।
1: कुल मिला

0: मिला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी, हमने ट्रेडिशनल परंपरागत खेती से लागत और खर्च की अपेक्षा ये फसलें हमारे हैं, अच्छी हैं।
0: राम भजन राय भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप 2 एकड़ में जल ब्राह्मी यानी बकोपा और मंडूक पानी की खेती कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: देखो राजेश भैया, समय जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है कार्यक्रम का, तो पंच बहन क्या बताए दी थे मौसम के अनुमान। तो देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी भारी बारिश के कोई चेतावनी नहीं है, मौसम आमतौर पर सूखा रही है। और इसके साथ साथ अपने पंच बहन के यहाँ अपन पता जरूर बता दो, कहे सुन की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और सुना चाहते हो तो उसके खातिर उनका पता बताना बहुत जरूरी है, जिससे अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकें।
7: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से अपने पंच कार्यक्रम तो सुना ही करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिक्रियाएं दे देते हैं तो और भी अच्छा लगा था हम लोगों का, अपने पंचन का भी। तो पंच कार्यक्रम का पता नोट करें, कार्यक्रम का पता है किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
6: अभी एक साथ जो अपन पंच भाई डिजिटल माध्यम से ने अपन बात हम तक पहुंचावा चाहते हैं, खास करके ईमेल के तरीके से अपन बात पहुंचावा चाहते हैं, तो उनके लिए ईमेल क्या पता है farmandhomeairlko@gmail.com। तो राजेश भैया,
7: हाँ भी नहीं,
6: देखो अब समय का इशारा है कि पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
7: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू ट्रेनों को दी स्वीकृति। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कल देर रात तमकुहीराज में नारायणी नदी के एपी तटबंध का कुछ हिस्सा टूटने के बाद जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिलाया कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो दो टीमें और पीएसी की चार यूनिट तैनात की गई हैं। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
1: सरकार ने यह भी तय किया है कि हर पीड़ित परिवार को सहायता भी देंगे। अगर कहीं जनहानि हुई है आपदा की श्रेणी में, उसको लेकर के उस परिवार को भी तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, अगर किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी मैंने आदेश दिया कि तत्काल उस परिवार को एक नया आवास उपलब्ध करवाए।
0: मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित सड़कों और तटबंध की मरम्मत कराने को भी कहा है। उधर पीलीभीत में पानी घटने के बाद शारदा और देवहा नदियों से कई जगह कटान हो रहा है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने आज देवहा नदी के कटान का जायजा लिया। उन्होंने अभियंताओं को बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में दोनों आचार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की योजनाएं और कार्य भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ ने संसाधनों के अभाव के बावजूद शिक्षा को बढ़ावा दिया और गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों और विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 एवं खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर जबकि विधान परिषद के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रमोद कुमार मिश्र को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं प्रयागराज झांसी से अशोक कुमार राठौर, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी और गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर पश्चिमी लखनऊ के डीसीपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: मंडलायुक्त कार्यालय पर जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी का नामांकन आज आरंभ हो चुका है, इस नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए फोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका मेन गेट है, न्यायालय कक्ष है या और जो पेरिफेरियल है या ट्रैफिक का अरेंजमेंट है, सब पे ड्यूटी लगा दी गई है। महिला पुलिस भी लगाई गई है, ट्रैफिक वाले भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न होने पावे, निर्विघ्न रूप से कार्य होता है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क और औद्योगिक विकास में हुए बदलावों ने उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों, कारीगरों, प्रदर्शकों और देश विदेश के खरीदारों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने ट्रेड शो की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा।
3: किसी मेले में 10 लाख 15 लाख लोग आते हो 5 दिन में, ये अभूतपूर्व सफलता बताएगा। लगभग 20,000 करोड़ का B2B हुआ और आज एक्सपोर्ट 2 लाख से ऊपर करोड़ का चला गया उत्तर प्रदेश का, ये भी इस ट्रेड की सफलता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली दो मेमू सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। खुर्जा मेरठ सिटी मेमू ट्रेन खुर्जा से दोपहर 1:15 पर चलेगी और शाम 5:20 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। वहीं सहारनपुर मेरठ सिटी मेमू ट्रेन सहारनपुर से सुबह 5:50 पर चलेगी और 8:10 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। ये दोनों सेवाएं मेरठ शहर के आसपास रीजनल रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगी। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज महाराजगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सेवा सेतु शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल दिया। इस पहल ने स्वच्छता को एक बुनियादी आवश्यकता बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: पीलीभीत के निवासी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय बनने के बाद स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है।
3: मेरे सहित समूचे गांव में पहले किसी के घर शौचालय नहीं थे, लगभग सभी लोग खुले में शौच जाते थे, इससे कई बीमारियां भी साथ आ जाती थी। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद हम सभी के घरों में शौचालय बन गए हैं। अब हम सब उन्हीं शौचालय का उपयोग करते हैं।
1: स्वच्छता की इस नई चेतना ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है और स्वच्छता से समृद्ध के संकल्प को साकार किया है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
0: झांसी के मऊरानीपुर की सुखनई नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों को जल तर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए थे। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन। भाजपा ने जारी की 6 MLC उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली दो मेमू ट्रेनों को दी स्वीकृति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8:00 FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसमें लीजिए सुनिए अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ।

0: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अविधेश द्विवेदी का काव्य पाठ आप सभी ने सुना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मीनाक्षी दास। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए योगेश प्रवीण का लिखा ये गीत।
1: आपकी एक छोटी

सुगम संगीत के कार्यक्रम में मीनाक्षी दास के स्वर में अभी आप सुन रहे थे योगेश प्रवीण का लिखा गीत, और लीजिए अब सुनिए खुर्शीद अजय की रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मीनाक्षी दास के स्वर में गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विश्व हृदय दिवस के दिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष बातचीत, कैसे रखें अपने हृदय को स्वस्थ। इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार से भूपेंद्र मिश्र बातचीत कर रहे हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आज हम अपने हृदय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज विश्व हृदय दिवस है। हर वर्ष हम सितंबर महीने में यह दिवस मनाते हैं। जो हमारा हृदय है वह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और वह कैसे काम करता है, उसकी क्या भूमिका है और उसमें क्या क्या खराबी आ सकती है और खराबी आने के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और उपचार क्या है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रयागराज के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। हृदय को लेकर के, जो उसके स्वास्थ्य को लेकर के कई प्रकार के मिथक

0: भी हैं इस समाज में, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा हृदय है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। जैसा कि प्रायः एक सुनने में एक शब्दावली आती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यह क्या है, यह होता कैसे है और इसके लक्षण क्या हैं?
1: देखिए, हार्ट हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है
0: जी।
1: हार्ट से जो हमारा शरीर एक कोशिकाओं का समूह है और उसको प्रत्येक सेकेंड ऑक्सीजन चाहिए। खाने में जो हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और फैट, ये सारे चीज़ खाने के बाद ब्रेकडाउन करके प्रत्येक ईच एंड एवरी सेल को चाहिए। तो जो हमारा ब्लड है वो एक मैसेंजर का काम करता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन है, उसी के थ्रू ग्लूकोज है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ईच एंड एवरी कोशिकाओं को मिलता है। तो इसलिए हार्ट जब हमारा नॉर्मली 60 से 120 के बीच में या सामान्यतः 70-72 बार प्रत्येक मिनट में धड़कता है, और उस धड़कन से हार्ट प्रत्येक मिनट जो है करीब 125 ml ब्लड जो है शरीर को देता है, और उतना ही ब्लड हमारे

0: हैं, मिनरल्स हैं, वो ईच एंड एवरी कोशिकाओं को मिलता है।
1: जी
0: तो इसलिए हार्ट जब हमारा नॉर्मली 60 से 120 के बीच में या सामान्यतः 70-72 बार प्रत्येक मिनट में धड़कता है, और उस धड़कन से हार्ट प्रत्येक मिनट जो है करीब 125 ml ब्लड जो है शरीर को देता है, और उतना ही ब्लड हमारे शरीर से ब्लड हार्ट में आता है,
1: जी
0: और उस ब्लड के थ्रू जो फेफड़े में हम लोग सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन शरीर में आता है, फिर खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज, जो प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में, फैट फैटी एसिड के रूप में, विटामिन्स मिनरल्स, ये सारे ब्लड के माध्यम से ईच एंड एवरी कोशिकाओं को जाता है।
1: जी
0: यदि हार्ट कमज़ोर हो गया या हार्ट की पंपिंग कम हो गई किसी वजह से, तो आगे ब्लड का जाना कम हो जाएगा शरीर में, जो जिससे मरीज को थकान सुस्ती बनी रहेगी, और वो ब्लड पीछे की तरफ फेफड़े में जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से चलने में सांस फूलना, रात में खांसी आना, पैर में सूजन आना, जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं ये आ जाया करते हैं। इसलिए हार्ट का स्वस्थ रहना जरूरी है। जैसे प्रत्येक शरीर को आर्टरी के द्वारा ब्लड और उसके द्वारा खाद्य पदार्थ पूरे शरीर में जाता है, उसी ढंग से हार्ट की मांसपेशियों को भी सब समय जो खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन ग्लूकोज चाहिए, और वो तीन आर्टरी जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से हार्ट की मांसपेशियों को जाता है। तो हमारे दिल की ब्लड सप्लाई जो है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होता है, वो मुख्यतया दो होते हैं, लेफ्ट हार्ट के लिए लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो कि डिवाइड करता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी में, और राइट साइड के हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी के। जब इन कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे
1: जी
0: हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं वो बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ये जन्मजाति बीमारी नहीं है,
1: जी
0: ये हमारे जीवन शैली की गलत जीवन शैली की वजह से धीरे धीरे इन नसों में ब्लॉकेज चालू हो जाता है। ज़्यादातर यह ब्लॉकेज 18 साल की उम्र से चालू होता है, जब जो हमारा एडोलसेंट का पीरियड है,
1: जी
0: जब बच्चा बढ़ता है लंबाई में, शरीर के अंग बढ़ते हैं, उस समय हम जो भी खाना खाते हैं वो शरीर के बढ़ाव में काम आ जाता है।
1: जी
0: लेकिन जब एक बार शरीर की जो लंबाई और वो पूर्ण हो जाता है अंगों का बढ़ाव, उसके बाद यदि हम एक्सेस खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में दिल की नसों में जमा होने लगता है, और ये जमाव धीरे धीरे धीरे ये ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल है जब ये 70% का हो जाता है,
1: जी
0: तब वो यदि आप चल रहे हैं पर्टली, जब आप दौड़ रहे हैं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो आपके छाती में भारीपन आने लगता है। कभी कभी ये भारीपन पर्टिकुलर लेफ्ट हाथ में या नीचे वाली जॉ में या कभी कभी पेट के ऊपरी भाव में भी भाग में भी रेडिएट करता है, साथ ही साथ उसके साथ कभी कभी सांस फूलना, पसीना आना, ये शुरुआती लक्षण है जब ब्लॉकेज 70% का होता है। उसके बाद भी यदि आप सतर्क नहीं हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, तो वो धीरे धीरे ब्लॉकेज और बढ़ता चला जाता है।
1: जी
0: जब वो ब्लॉकेज 80 से 90% का हो जाता है, तब फिर आप जो नॉर्मल काम करते हैं कि जो अपने नहाने धोने कपड़ा धोने छोटे छोटे घर के कार्य करने में भी आपके छाती में भारीपन का आने लगता है, तो उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और जब वो ब्लॉकेज सडन 100% हो जाता है कि जब भी आप स्ट्रेस कर रहे हैं, ज़्यादातर सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग में उठे टॉयलेट गए और अपने स्टूल में जोर लगाए, जोर लगाते क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की गति बढ़ती है, उसमें कभी कभी ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक थे
1: जी
0: वो सडन रप्चर कर जाते हैं,
1: जी जी
0: और रप्चर करते ही जो कॉगलेंट सब्सटेंस है ब्लड में आ जाते, वहाँ पे ब्लड के प्लेटलेट्स कॉगलेशन फैक्टर्स स्टिमुलेट होके सडन नस को 100% बंद कर देता है। जब वो 100% बंद हो जाता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। उसमें सडन छाती में दर्द जैसा कि कभी भी आपने महसूस नहीं किया है, उतना सीवियर दर्द होता है, जबकि एंजाइना में हमने आपको बताया जस्ट आप चलते हैं दौड़ लगाते हैं पर्टली खाना खा के तो भारीपन आता है, दर्द नहीं होता, लगता है एक छाती में भारीपन सा आ गया, खिंचाव सा आ गया, वो खिंचाव लेफ्ट हैंड में, कभी राइट हैंड में, कभी दोनों हाथ में, कभी जबड़े में भी जाता है। लेकिन जब वो 100% आर्टरी एकाएक बंद हो गई तो आपको काफ़ी सीवियर छाती में, पर्टिकुलर लेफ्ट साइड के मिड चेस्ट में दर्द होगा। उसके साथ ये दर्द कभी कभी लेफ्ट हैंड में, साथ साथ कभी लोअर जबड़े में भी रेडिएट करता है। उसके साथ खूब जोर का पसीना आना, सांस फूलना, ये सडन

0: सिम्टम्स आते हैं और ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। ऐसा कभी भी हो तो उसमें वेट नहीं करना है, क्योंकि आप 100% नस बंद हो गई तो जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनको तो प्रत्येक सेकेंड ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, फैट चाहिए, और सडन ब्लॉकेज होने की वजह से सडन ऑक्सीजन ग्लूकोज कटअप बंद हो गया, तो जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियां विद इन 8 मिनट्स में डेड होना चालू हो जाती हैं।
1: विद इन एट मिनट्स
0: में डेड होना चालू हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 8 मिनट के भीतर ये डेड होने लगती हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी आती है जो सुनने में आती है, गोल्डन आवर की बात की जाती है
0: जी,
1: क्या ये इस संदर्भ में प्रयोग होता है?
0: जी। तो जब वो मांसपेशियां 8 मिनट के अंदर बंद होने लगती हैं तो वो धीरे धीरे मांसपेशियों में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है 8 मिनट में, जो कि यूजुअली 6 घंटे से 3 to 6 आवर में कंप्लीट होती है। तो यदि हम उस समय डॉक्टर के पास अर्ली आवर में Within 1 hour, within 2 hours, जितना जल्दी हो, और तुरंत आप पास के हार्ट के डॉक्टर नहीं हार्ट के हॉस्पिटल में ले जाना है, क्योंकि जिसको हार्ट अटैक हुआ तो अब उसको भर्ती करके ऐसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है जो क्लॉटिंग हुई है सडन उसको तुरंत वो गला दे, और जिससे ब्लड का जो बंद हो गई थी नसें वो खुल जाए, तो जो मांसपेशियां फिर से रिवाइव होना चालू हो जाएं। ज़्यादा अच्छा रहता है यदि आपके शहर में कार्डियक हॉस्पिटल है और वहाँ पे कैथ लैब है, तो उसमें बेस्ट ये रहता है कि आप तुरंत जाके एंजियोग्राफी फट से करें, और करके उसमें हम लोग वायर के द्वारा जहाँ पे वो क्लॉट जमा है उसको हम खोल देते हैं, फिर बैलून के द्वारा खोलने के बाद उसमें हम लोग स्टेंट लगा देते हैं, चूंकि ये पक्का काम है। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है कि नस बंद हुई नस खुल जाए। खुल होने के 2 तरीके हैं, या तो दवाई के द्वारा या हम एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दें, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा सभी शहर में उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध भी है उस आवर में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, यदि डॉक्टर भी उपलब्ध है हो सकता है उस समय कैथ लैब बिजी हो। तो इसका अल्टरनेटिव जो दूसरा तरीका है जहाँ पे कैथ लैब उपलब्ध नहीं है, और आप यदि बहुत अर्ली आवर में आ गए within 3 hours में आ गए, तो उसमें दवाई का इफेक्ट और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का इफेक्ट दोनों बराबर होता है, जिससे जो मांसपेशियां की जो नेक्रोसिस स्टार्ट हुई थी वो स्टॉप हो जाए और मांसपेशियां फिर से धीरे धीरे रिवाइव करें। तो प्राइम जैसे ही जो हमारा कहना है कि यदि आपको हार्ट के लक्षण हुए, आप दौड़ रहे हैं या भारी काम कर रहे हैं या स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ गया, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपके छाती में भारीपन आया और उसके साथ हल्का सांस फूल गया, या उस भारीपन लेफ्ट हैंड में आ गया, या कभी कभी सिर्फ नीचे वाले जबड़े में भारीपन आ गया, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस और दवाई के द्वारा ये जो स्थिति आपने बताया, आपको बताया कि अनस्टेबल एंजाइना 90% ब्लॉकेज होना या 100% का ब्लॉकेज जो हार्ट अटैक की वो स्थिति नहीं आए।
1: डॉक्टर साहब, आपने तो सारी चीज़ों को सम्मिलित कर लिया, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आज के समय में हृदय रोग देखने को मिल रहे हैं, इसका मुख्य कारण अगर आप 2 से 3 बिंदु में बताना चाहें तो वे क्या हैं, और इसमें जैसा कि आपने बताया ही कि हमारा हृदय बिल्कुल स्वस्थ होता है और वो जो गलत लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली जैसी गलत है, उसके हिसाब से वो फिर ख़राब होना स्टार्ट करता है, उसमें जो कोरोनरी है उसमें ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें आचार यानी जो हमारा आचरण है, आहार जो हम खाते हैं और विहार माने जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीज़ों का कितना बड़ा योगदान है?
0: देखिए, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये टोटली एक्वायर्ड डिजीज है और इसको हम रोक सकते हैं, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये बीमारी हमारे गलत खान पान की वजह से ही होती है। यदि बच्चों में ये एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए कि हमें संतुलित आहार लेना है, क्या चीज़ निषेध है, जैसे संतुलित आहार का मतलब हुआ कि खाने में जो है ज़्यादा पर्टली फैटी चीज़ें, बेसिकली हमने बताया कि हार्ट की नसों में जब कोलेस्ट्रॉल का जमा होना चालू हो जाता है, तो कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी रोल है, तो हमें हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट यदि हम ना लें, जैसे खान पान में जैसे आप देखिए जो हाई कोलेस्ट्रॉल आजकल बच्चे ज़्यादातर जो
1: पिज्जा बर्गर
0: ये सब लेते हैं,
1: साथ
0: साथ समोसे हैं
1: जो कम समय में तैयार करने वाले जो खाने हैं,
0: समोसे हैं, पकौड़े हैं, या

0: भुजिया है, इन सब में बहुत मात्रा में घी तेल रहते हैं। तो जिसकी वजह से आप यदि इन चीज़ों को शुरू से, पर्टली हमने बताया कि जब आपका एडोलिसेंट पीरियड खत्म होता है, यदि आपकी लाइफ स्टाइल खान पान सही नहीं है, तो ये ब्लॉकेज उसी समय से शुरू होता है। तो
1: जी
0: आपको शुरुआत में ही खाने में घी तेल की चीज़ें, इनसे बनी हुई चीज़ें, इनको रेस्ट्रिक्ट करना है। और जो खाने में अधिक मात्रा में लेना है, हरी सब्जी, जो सीजनल सब्जियां देखिए 3-3 महीने पे बदल जाती हैं,
1: जी
0: फल 3-3 महीने पे आपके लिए बदल जाते हैं। तो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं, जितनी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उससे होने वाले सलाद बनते हैं, इसकी मात्रा आप जितना लेंगे, तो इसमें प्रचुर अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी बीमारियों को रोकती हैं,
1: यानी आपकी जो थाली है जितनी रंगीन होगी
0: उतनी अच्छी
1: उतनी
0: है,
1: ही अच्छी
0: उतनी
1: होगी।
0: अच्छी है।
1: जी।
0: तो आपको तेल घी की चीज़ें कम लेनी है शुरू से ही। बोला जाता है कि आप अपने कैलोरीज का टोटल 25% खाना आप फैट से लीजिए, लेकिन उसमें भी जो सैचुरेटेड फैट हैं, सैचुरेटेड फैट जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो ओनली 10% होने चाहिए।
1: जी
0: तो एक तो हमने बताया खान पान का,
1: जी
0: दूसरा जो सबसे बड़ा जिसको हम रोक सकते हैं वो है तंबाकू, और तंबाकू के विभिन्न तरीके जो हम यूज करते हैं, जिसमें स्मोकिंग सबसे बड़ा है। आजकल स्कूल गोइंग बच्चे देखिए, जगह जगह पे स्कूलों में भी लोग गुटखे बेच रहे हैं,
1: जी
0: सिगरेट बेच रहे हैं, बीड़ी बेच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रिवेंटिव कारण है, जो यंग लोगों में आजकल देखिए 30 साल 40 साल के लोगों में हार्ट अटैक हो जा रहा है,
1: जी जी
0: उसका
1: वही
0: जो मुख्य कारण ये सिगरेट स्मोकिंग है,
1: जी इतना बड़ा कारण है डॉक्टर
0: सबसे
1: जी।
0: बड़ा कारण है
1: जी
0: सिगरेट स्मोकिंग। और उसके जो जैसे गुटखा है, तंबाकू, जिस भी फॉर्म में है, वो सिर्फ हार्ट की बीमारी पैदा नहीं करती। यदि आप सिगरेट ले रहे हैं तो लंग कैंसर का मुख्य कारण है, सांस की बीमारी का मुख्य कारण है। यदि आप गुटखा ले रहे हैं, उसमें मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है।
1: जी
0: तो ये सबसे प्रिवेंटेबल कारण है, वो आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो ना लें, चूंकि वो अर्ली एज में हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण है। और तीसरी जो सबसे मुख्य कारण है, मोटापा।
1: जी
0: आजकल बच्चे खाना खूब खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी
1: जी
0: बहुत ही
1: रहे
0: कम है।
1: जी जी
0: बच्चे बाहर के लिए, पहले बच्चे खेलते थे, दौड़ते थे, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कुछ भी नहीं तो साइकिल कर रहे हैं या स्विमिंग है। इन सब से जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं,
1: जी
0: उससे आपको मोटापा नहीं होगा। और
1: जी
0: आपको पता है, यदि आप एटलीस्ट आधा घंटा
1: जी
0: ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लें और कुछ ना करें, ब्रिस्क वॉकिंग आधा घंटा करें,
1: जी
0: तो उससे कितनी बीमारी का रोकथाम होता है आपको पता है? उससे ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, शुगर की बीमारी यदि है तो कंट्रोल में होगा, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो कम होगा, यदि आपको मोटापा है तो वो कम होगा, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, जो गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों के कैंसर, उसकी होने की संभावना कम हो जाती है, और साथ साथ में ओस्टियोपोरोसिस, घुटनों की बीमारी, ये सारे सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ आप अपने लिए आधा घंटा 45 मिनट आप निकालिए और मॉर्निंग के समय ब्रिस्क वॉक करिए, खुली हवा में ब्रिस्क वॉक करें।
1: जी
0: जो इनर गेम्स हैं, जैसे बच्चे लूडो और ये मोबाइल पे गेम करते हैं, इसको डिस्करेज करिए और आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाइए। इससे ना सिर्फ मोटापा कम होगा, बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियाँ, सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी।
1: श्रोताओं, ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो कि प्रयागराज के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: कैसे रखें अपने हृदय को स्वस्थ, विश्व हृदय दिवस पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार अनजान, संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म इज्जत का गीत, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म खामोशी में एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सबरस।

इसके साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर

0: क्षेत्र में फर्स्ट रिसर्च और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
4: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
5: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
6: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावा

0: अवे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
3: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
4: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
2: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnewshindi को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया।

0: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. He added that India stands firm as the first

है। मौसमियात के महकमे ने आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और त्रिपुरा में भी कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते, जिनमें रिले, शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। भारत ने खवातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3:29.69 सेकंड में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4x400 मीटर दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू धांडा ने जापान में खवातीन के इनफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में खवातीन के ट्रैप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मनीषा कीर, नीरू धांडा और अशिमा अहलावत को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने उनकी कारकर्दगी की सताइश की। वजीर आजम ने पूरी टीम को मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों की पैदावार की माकूल कीमतों को यकीनी बनाया जा सके। प्रगति 50 के तहत इकदाम के नए सिलसिले का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मुल्क भर में 50 मिसाली शहर तैयार करना है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू कश्मीर पर गैर ज़रूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4x400 मीटर रेले में सोने का तमगा जीता। खवातीन के ट्रैप इनफरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशां। लेकर हाजिर हूं कुछ चुनिंदा गजलें आपके लिए। श्रोताओं, गजल केवल शब्दों और सुरों का संगम नहीं है, बल्कि ये दिल की भावनाओं को आवाज देने का एक खूबसूरत माध्यम है। कभी ये मोहब्बत की बात करती है, कभी जुदाई की बात करती है, कभी बेवफाई की बात करती है, और कभी जिंदगी की उन एहसासों की जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो आइए इस खूबसूरत सी गजल के साथ आज की इस शाम का आगाज करते हैं।

रात अमावस की थी। चांदनी गुमसुम सी थी, साथ कोई नहीं था, चांद भी नहीं।

कुछ अल्फाज दिल को छू जाते हैं, कुछ नगमे यादों में बस जाते हैं, और कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो ख़त्म होकर भी दिल में गूंजती रहती है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगली पेशकश।

दोस्तों, गजल की खूबसूरती यही है कि हम शेर में एक कहानी छुपी होती है, हर मिसरे में एक एहसास छुपा होता है। कभी कोई शेर मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, कभी कोई पुरानी याद ताज़ा कर देता है, और कभी कोई गजल सीधे दिल तक पहुंच जाती है। तो क्यों ना इस खूबसूरत सफर को यूं ही जारी रखा जाए।

गज़ल कहने को तो कुछ लफ्ज़ ही काफ़ी हैं, मगर उन्हें महसूस करने के लिए एक दिल चाहिए। और जब दिल की बात सुरों में ढलती है तो महफिल अपने आप ख़ास हो जाती है। आइए सुनते हैं एक और पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कहकशां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: भाई को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक

0: हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: And she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere in the most distressful condition. Pulled her out of there, got her

0: मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back in. The academy today she's an Asian champion because of her life-changing experiences become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
2: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को लेकिन हाँ अगर पदकों के हिसाब से आंखें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे। 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में। जाने अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन इबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बेरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant Brazilian comeback to outpunch

0: Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1 11-3 11-9 से जीतकर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
0: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग

0: a 4-point lead midway through the set. Two sets down, India showed tremendous composure to turn the match around. They kept their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With three wins from three matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: कैनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ आठवां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौर ने 127.70 सेकंड के साथ दसवां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने सातवां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने नौवां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
0: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ नौवां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं।

0: इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
1: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of two gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
2: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। राग है मालकौंस।

राजन दे

कारण से कहूं जग माता है

ಮಾರೆ ಬಾಮದ ಮಾರದ ನೀರ ಗಾರ

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन राग था मालकौंस।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: No external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत

0: 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, उड़द एंड मसूर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी।
3: इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। वी नीड टू कनेक्ट फार्मर्स विद द मार्केट थ्रू बोथ सिस्टम्स विद एमएसपी एंड विदाउट एमएसपी। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द गवर्नमेंट विल परचेज 100% ऑफ तूर, मसूर एंड उड़द। हाउएवर, वेदर इट इज अ खरीफ और अ रवी क्रॉप, द प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट शुड बी मेड प्रॉपरली इन एडवांस सो दैट फार्मर्स रिसीव पेमेंट विद इन 48 आवर्स।
2: 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, BL Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "This is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty, and no external party has any locus standi on the issue." On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India,